एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: साथ में मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी

0: उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले दो दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

等。आचार्य चाणक्य का कथन है, मनुष्य का सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वो है उसका अज्ञान। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 252। संगीत सरिता में सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिएगा श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर भाग 5। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हमें राही प्यार के।

सुबह 8:15 पर सुनिए वंदे मातरम एक जयघोष। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनेंगे भाग 37। इसे आप दोबारा पर चित्रलोक कार्यक्रम, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा गायिका कानन देवी पर। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:00 पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश सुनिएगा। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 11:00 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और 1:00 सुरीला सफर। दोपहर 2:00 वंदे मातरम एक जय घोष का पुनः प्रसारण। लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज दो बजकर 30 से सदाबहार नगमे, 3:00 हेलो सहेली, 4:00 पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी भाई हो तो ऐसा ये कहानी सुनिएगा। लेखक और वाचक स्वर श्याम माहेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 5:30 पर ताराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम सुनेगा। शाम 6:45 पर संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें, श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग, कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। भाग 5 फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7:00 से। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रीकर की बातचीत सुनेगा। भाग 3 प्रस्तुतकर्ता हैं सुबैर खान।

हवा महल में रात 8 बजे सुनिएगा पीहर पुराण। ये झलकी लेखन श्याम सुंदर भारती का, निर्देशन सुबोध निगम का। 8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा गायिका कानन देवी पर। 10:00 छाए गीत प्रस्तुत करता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे। फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पनखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

0: लेकर इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी में आज सुनिए राग मुल्तानी।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि हम कुछ दिनों से संधि प्रकाश रागों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले राग पुरिया, राग मारवा, पुरिया धनाश्री और पुरिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस राग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उस राग का नाम है मुल्तानी। जैसा आप लोग जानते हैं, राग मुल्तानी के गाने का समय है सायंकाल 5 से 6:30 तक का। इसमें रिखप गंधार धैवत कोमल है, मध्यम तीव्र है, अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं। इसका उगम जो है टोड़ी ठाट से होता है। इसके आरोह में रिखप और धैवत वर्जित हैं और इसका अवरोह जो है संपूर्ण है, इसलिए इसकी जाति हो गई ओड़व संपूर्ण है। वादी स्वर पंचम, संवादी षडज। इसका रस श्रृंगार माना जाता है। मुल्तानी भी बहुत ही लोकप्रिय कर्ण मधुर राग है। इसका आरोह अवरोह इस प्रकार है।

राग मुल्तानी में मैं आपको दो बंदिशें सुनाने जा रही हूँ। पहली वाली जो है ताल तीन ताल में निबद्ध है और दूसरी बंदिश ताल एक ताल में।

अभी आपने राग मुल्तानी का परिचय सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग मुल्तानी में बिस्मिल्ला खां और साथियों का शहनाई वादन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आप और हम सभी से जुड़े विषय विश्व न्याय दिवस पर, जो कि आज ही के दिन यानी कि 17 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी कहा जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को न्याय, मानव अधिकार, कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेही के प्रति जागरूक करना है। 17 जुलाई 1998 को अपनाए गए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट संविधि की स्मृति में मनाया जाता है, जिसके आधार पर न्यायालय की स्थापना हुई। बातें आपसे आगे और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक गीत सुनने का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर से कार्यक्रम नमस्कार अलवर, और आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना, मानव अधिकारों की रक्षा को बढ़ावा देना, गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को दोषियों को दंडित करने की व्यवस्था को मजबूत करना, विश्व में शांति कानून के शासन और न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाना। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी को अपने लिए न्याय व कानून के प्रति अधिकारों के प्रति सजग करना व अपने अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: यदि आज के सामाजिक परिवेश में न्याय दिवस की भूमिका की बात करें, तो जहां आज विश्व में युद्ध, लड़ाई व अराजकता का माहौल है, तो ऐसी परिस्थिति में इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। आज के समय में न्याय दिवस केवल एक स्मरण दिवस नहीं, बल्कि यह न्याय, समानता, मानवाधिकार, शांति और उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। एक न्यायपूर्ण समाज स्मर्द सुरक्षित और लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला होता है।

श्रोताओं, विश्व न्याय दिवस याद दिलाता है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान है, चाहे उनका पद, शक्ति या देश कोई भी हो। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और उनके संरक्षण पर बल देता है। युद्ध, अपराध, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर देता है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और समान अवसर प्रदान करने की प्रेरणा देता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर नए विषय के साथ कार्यक्रम नमस्कार अलवर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म मौसम में। गुलजार का लिखा गीत था, मदन मोहन का संगीत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म इंतकाम में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: सत्ते पे सत्ता, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। गुलशन बावरा का लिखा गीत था और आरडी बर्मन का संगीत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
0: दो दीवाने शहर में।

अभी आप सुन रहे थे रूना लैला और भूपेंद्र सिंह को फिल्म धर्मदा में। गुलजार का लिखा गीत था, जयदेव का संगीत। फिल्म संगीत के आखिर में सुनिए मुकेश को फिल्म आनंद में। बोल गुलजार के हैं और सलील चौधरी का संगीत है।

मुकेश के गाए फिल्म आनंद के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से कंगंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर

0: कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है ओर्मूज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़, राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक, दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 8:15 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आ सुनिए भूपेंद्र और मिताली सिंह की गाई गजलें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र और मिताली सिंह की गाई गजलें। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
0: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
0: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
0: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
0: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्ही धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
0: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
0: जी तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
2: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
2: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़

0: पर पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं?
1: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
2: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
1: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
2: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
1: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तप भूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
2: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
1: कैसे बना हिमालय।
2: आज रिद्धि,
1: नव्या
2: और रिदित
1: सब बहुत खुश है
2: क्योंकि उनका परिवार
1: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
3: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
4: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
3: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
4: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
3: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
4: बहुत मजा आएगा।
2: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
1: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
2: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
1: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
2: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
1: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
3: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
3: क्या 20 करोड़ साल?
2: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
3: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
2: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विदित तुम बताओ।
4: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
3: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
2: तुम बताओ।
3: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
2: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
3: टैथिस महासागर।
2: वाह,
3: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
2: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
3: अलग होकर खिसकने लगे?
2: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
3: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
2: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
4: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
3: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
2: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेन।

0: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट।
1: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
2: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
2: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
2: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टेथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
2: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
0: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
2: हाँ बेटा क्यों नहीं।
0: ठीक, वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
2: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान है। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
0: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
2: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टेथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
0: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण है?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
2: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
2: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
2: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
2: बिल्कुल सही बात।

0: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनियांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन

0: के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
2: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
1: अच्छा?
0: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
2: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
0: स्वामीनाथन बोला।
1: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
0: दादी ने पूछा।
2: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
1: अच्छा।
0: दादी काफी प्रभावित हुईं।
1: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
0: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
2: बस काफी है दादी,
0: उसने रूखे स्वर में कहा।
2: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
1: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
0: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
1: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। हाँ, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
2: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
1: बोलो
2: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
1: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
2: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
1: अरे नहीं नहीं,
2: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
0: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।

0: दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
1: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
2: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
0: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
2: दो शेर राजम पर झपटे थे,
1: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
0: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
2: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
1: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
0: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
2: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
1: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
0: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
2: अच्छा।
1: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
2: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
1: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: प्रकरणों का निस्तारण किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित होगी। इस तकनीक में हाइड्रोजन को बिजली में बदला जाता है। इसके संचालन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। ये रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इनमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर होने वाले समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। इस योजना के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन को लगभग 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेलवे स्टेशन का यह कायाकल्प भारतीय रेल की आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित रेलवे प्रणाली के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के अलावा भारत के पर्यटन मानचित्र पर थार नगरी की पहचान को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह रेलवे स्टेशन मरुस्थलीय इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार शहीद परिवारों, पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। उन्होंने ये बात जयपुर में सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सैनिकों और उनके परिजनों से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय सेना की वीर गाथाओं और शौर्य के प्रतीकों से आमजन को परिचित कराने की योजना ने को कहा। साथ ही प्रदेश भर में शहीद स्मारकों के रखरखाव और उनके एक रूपीय मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मॉनसून तैयारियों की समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने नालों की समय पर सफाई, जल निकासी की समुचित व्यवस्था और बारिश के बाद टूटी सड़कों की जल्द मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिन के इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जा रही है। वहीं ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद 8 महिलाओं और एक नाबालिग की मौत के मामले में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने बताया कि मृतकों में 5 महिलाओं की मृत्यु भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी अस्पताल में हुई, जबकि 3 महिलाओं और एक नाबालिग की मृत्यु बांसवाड़ा जिला अस्पताल में हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। NTA ने कहा कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। विदेश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे, इनमें राज्य के 8 स्टेशन शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार शहीद परिवार, पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया। राजस्थान के 5 विद्यार्थी शीर्ष 20 में शामिल और राज्य में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों में पिछले एक माह में करीब 2 लाख लंबित प्रकरण

0: सीट्स में से 715 अंक प्राप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान के 5 विद्यार्थियों ने भी शीर्ष 20 रैंक में जगह बनाई है। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद 21 जून को देश विदेश के 551 शहरों में 5,440 केंद्रों पर 13 भाषाओं में पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रदेश भर में आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों के लंबे समय से लंबित कार्यों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार के अनुसार 12 जून से 15 जुलाई तक 18,953 सेवा शिविर लगाए गए। इनमें लगभग 10,500 ग्रामीण और 8,000 से अधिक शहरी शिविर शामिल हैं। ग्रामीण शिविरों में 1,90,000 से ज्यादा नामांतरण और 1,00,000 से अधिक पट्टों का वितरण किया गया। लगभग 17,500 रास्तों के प्रकरण सुलझाए गए। शहरी शिविरों में 42,252 पट्टे जारी किए गए। 13,000 से ज्यादा नामांतरण के मामलों का निस्तारण हुआ। शिविरों में कई अन्य सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई। झालावाड़ में राजसखी मार्ट और कैफे शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये कैफे केवल उत्पादों की बिक्री का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं के हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच है।
1: इस पूरे कैफे को और इस डिपार्टमेंटल स्टार को हमारी जो राजीव गांधी जो महिलाएं हैं वही संचालित करेंगे। सेल्समैन से लगा करके, कुक से लगा करके और रिसेप्शनिस्ट तक सारा का सारा ये कैफे राज सखी के नाम से जाना जाएगा और जो हमारी राजीव गांधी महिलाएं हैं वो इसे संचालित करेंगी। यहाँ पर जो राजीव का की महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन भी होगा, उनका एक तरह से शोकेसिंग भी होगी और जो भी आसपास जो यहाँ झालरापाटन में पर्यटक आते हैं उनको एक स्तरीय कैफे यहाँ मिलेगा।
0: राजस्थान पीसीपीएनडीटी टीम ने हरियाणा के डबवाली में डिकॉय ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक दलाल को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन अकड़ तोड़ के तहत की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि आरोपित लंबे समय से राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय था। वो गर्भवती महिलाओं को हरियाणा ले जाकर अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण कराने का काम करता था। टीम ने डिकॉय ग्राहक के जरिए उसे रंगे हाथों पकड़ा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विधायी गौरव यात्रा तथा पूर्व और वर्तमान विधायकों के ऐतिहासिक समागम की देश भर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित अनेक गणमान्य लोगों के बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इनमें राज्य के 8 स्टेशन भी शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार शहीद परिवार, पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया। राजस्थान के 5 विद्यार्थी शीर्ष 20 में शामिल और राज्य में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों में पिछले माह में करीब 2,00,000 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

कृष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाजों में। नासिर फराज ने इसे लिखा था और राजेश रोशन का संगीत था। बंटी और बबली फिल्म का गीत आपको अब सुनवा रहे हैं सोनू निगम, महालक्ष्मी अय्यर की आवाजें। गुलजार के बोल हैं शंकर एहसान लॉय की तर्ज।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में बंटी और बबली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे

सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजों में फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। समीर ने इसे लिखा था, हिमेश रेशमिया ने इस गीत की तर्ज बनाई थी। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: उसने कहा कि यशोदा एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आओ नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थीं बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

कानन देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज़ जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की धड़कन।

आनंद देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं, जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती।

तकरीबन 4 दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता के मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रही, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

इतने छोटी सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रहीं जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमिनोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थीं।

आनंद देवी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रहीं। उनकी कुछ ऐसी ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्य। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

आनंद देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थीं। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

कानन देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला, और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

कानन देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई न कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली

महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

कानन देवी के प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

किरण देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रहीं। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी के संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
3: हम और आपको जुड़ने में एक सेतु का काम करता है और इससे आपका और हमारा जुड़ाव यकीनन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो हमारे पहले कॉलर कौन है, जरा देखते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं? अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका निमित होता बोल रहा हूँ, मांगीलाल धाकड़।
0: मांगीलाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं
1: जी मैम। आपके प्रोग्राम में सुन के बहुत खुश होता हूँ। विविध भारती बम्बई के कार्यक्रम में कम से कम 15-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी मैम।
0: अच्छा, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे से मोरों की आवाज़ आ रही है।
1: जी जी मोर है, मैं अभी खेतता हूँ खेती बाड़ी पर।
0: अच्छा, मतलब आपने खेत में बैठकर बात कर रहे हैं और वहाँ पर मोर आते हैं?
1: जी जी मोर आ रहे हैं, मोर बहुत पक्षी है, मोर है, कोयल है, सभी तरह की पक्षी नजर आते हैं हमारे गाँव में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगता होगा ना?
1: जी जी मैम, अपने खेती बाड़ी में मक्का बो रहा थी, उसमें यही बैठा हूँ मैं, यहीं से बात कर रहा हूँ।
0: तो आपके शहर का या गांव का मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे गुना एमपी में मौसम मतलब अभी तो बादल हो रहे हैं, पानी भी बरसा था 2-4 दिन पहले।
0: अच्छा,
1: अभी तो अच्छा मौसम है।
0: चलिए, तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा ना?
1: जी नहीं, फसल का नुकसान नहीं है, बारिश की फसल है, मक्का है, कुछ नुकसान नहीं है उसमें।
0: तो ज्यादा मोर आते हैं क्या?
1: हाँ बहुत मोर है हमारे गांव में।
0: उनको खेतों में आने से कैसे रोकते हैं आप ताकि फसल को नुकसान नहीं हो?
1: बिल्कुल नहीं रोकते हैं, वो नुकसान नहीं करती हैं भी, थोड़ी बहुत चौकती हैं, चौक के निकल जाती हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: और आपके प्रोग्राम में हेलो फरमाइश, रहतनामा, साकी सहेली और आपकी जो मन चाहेगी तो ये पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और कार्यक्रमों को सुनते हैं विविध भारती के। आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे बंजारन का गीत है, ये जीवन इतनी बार मिले, हर बार मुझे साजन का प्यार मिले।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ये

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
1: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे है, मजों में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता है वो इतने नियमित है कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
1: विशेष खास तौर पे एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को,
0: श्रोताओं
1: को, कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसी माध्यम है के जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आँखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
1: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से भी, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में नहीं देना है। और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे, जैसा आप आलोचकर विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज़ सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
0: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
1: हम यहाँ पे परभणी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: हमें दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंतोनी फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, ये गीत सुनना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूब सूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दो रुसवा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप जयकुमार बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से, आप कैसी हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई, अभी दो तीन दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
0: अरे वाह,
1: बहुत बादल हो रहे हैं,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
1: जी। गाना सुना दीजिए, फैरवी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते।
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ, मंदाकिनी जी।
0: जी जी।
1: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चलना और आपस में मेल जोल होता था बहन जी।
0: जी जी।
1: मेरी उम्र 84 चालू है, अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुफ्तगु करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
1: ये मेरा जो शौक है, ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्य वर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है, और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए बहन जी।
0: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाए?
1: फिर प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, फरेबी, धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है बहन
0: जी। बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है, और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं पप्पू चंदन बोल रहा हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या कर रहे हैं इस समय?
1: ड्यूटी पर आ गया है, बेकरी में है।
0: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
1: जी जी जी।
0: क्या समय है आपके आने का?
1: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक बीच में आ जाते हैं।
0: और रात तक?
1: 9:30 बजे।
0: अच्छा, चलिए, नौकरी आराम की है ना?
1: जी जी।
0: तो बताइए, कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
1: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकीज है, सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम, मतलब बेकरी आइटम जो है।
0: आप भी कुक का काम करते हैं?
1: जी जी, मैं केक बनाता
0: हूँ। अरे वाह, कौन सा केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
1: नॉर्मली चलता है पाइन एपल, ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वो ज्यादा। हाँ, लेकिन पाइन एपल जो है वो मतलब हमेशा ये
0: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है, पाइन एपल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
1: बन जाते वाला जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही जैसा चल जाए।
0: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
1: 20 साल हो गए, 2002 से लगा था।
0: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: विधाता पिक्चर का मैम, आशा की चंद लक्ष्मियों का, विधाता पिक्चर का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: आशा की चंद लक्ष्मियों का,
0: चलिए आपकी पसंद का ही गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार राम राम, कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया है। मजाक में जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: शहर नहीं, हमारा तो गांव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया अच्छा, ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान गेहूँ में लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले सन्ना पोत बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी बरसात चली है, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम अच्छा है।
0: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
1: बिल्कुल जी, अब हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: तकरीबन चावल की गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
0: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
1: जैसे एक माँ आपके बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हमें जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
0: ये बात तो खैर सही है।
1: दिन में 3 दफा घेरा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
1: नहीं जी, 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको हम।
1: मैडम जी क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
0: चलिए तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग सुसोता संघ बस स्टैंड बंदा देखो चाय वाले को ना चाय पी लो दीदी।
0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी?
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
1: लक्ष्मण रेखवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली है आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को।
0: अच्छा 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकानें हो गई हैं अब चाय की। और नाश्ता है, और नाश्ता भी आप खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुँह में पानी आ गया ये सब सुन के, तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं, और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होती रहते हैं। और ये हमारी तो चाय रखते ही रहती है, धरी नहीं रहती है।
0: हाँ तो किस में पिला रहे हैं चाय, कूलर में पिला रहे हैं या प्लास्टिक की गिलास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी, पहले तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ
0: चलिए कौन सा गीत सुनवाएं आपको बताइए?
1: आज मोहरा पिक्चर है, ना कजरे की दाल ना मोतियों की हार, तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर का साथ जो लोग रहते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश है गीत, और जो 3 बजे गतिशैली कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह? प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा?
1: हाँ, त्रिपुरा तो रबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है। तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है, तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माया का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छी है मंदिर, घूमने के लिए बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान?
1: त्रिपुरा में तो बांस की खेती में बहुत अच्छी है, बांस का जो
0: काफी अच्छे सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघे का, हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का दौरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: और आपको बताऊँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हकाई जुताई होती है, और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी, मतलब आपको बताऊँ, 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊँ आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं, नदियाँ, तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूँ, लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है 2 फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है, तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना,
0: हाँ?
1: जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो गर्मी में खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरकता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना, जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी, उसके बाद गेहूँ, लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है, और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं, फसल आएगी, तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है, और उसके बाद में जब फफूंद होती है, कभी कभार तो इल्लियाँ भी होती है सोयाबीन में, मटर में,
0: हाँ,
1: लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा,
1: और ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप्स पे आने से हमें, आपको बताऊँ, स्पष्ट प्रसारण मिलता है, और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विद्यार्थी चलता ही रहता है, उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो भी सुनते हैं, और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रा वाले जो कार्यक्रम आता था ना विद्यार्थी से, जी उसमें काफी लेटर लिखे।
0: बताइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म मकान में प्यासा सावन, और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का ही।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नंदाजनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात हो रही हूँ आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी, बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा तो समाज के लिए क्या काम करते हैं, विशेष कोई?
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई है?
1: हाँ हाँ हाँ, वो बताने का, उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
0: फिर उनकी उनकी मदद करते हैं। हाँ हाँ ठीक है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया और दीदी सभी सखी सहेली, हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, गीत माला, सभी सदाबहार नगमे अभी जो शुरू हो गए ना, वो मन क्या है गीत, वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
0: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
1: खत मैं लिखने, मैं ब्लैंड हूँ दीदी,
0: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
1: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है, मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी, हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी यहाँ पास में है वो भी सुनता हूँ। उसके बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है दीदी
0: वो सभी कार्यक्रम।
1: मैं AM पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम, जो हमारे राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, उसके पर सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं?
1: ओ बिल्कुल,
0: कहीं ना कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है।
1: दो रेडियो मेरे पास आए, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दीदी, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे, वो लेके सुनता था।
0: वो अभी भी आपके पास है?
1: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े

0: कि वो अपर में के दो रेडियो है मेरे पास अभी।
1: अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममता जी और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
1: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो जो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: मैं बजनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव शृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
0: अच्छा, जैसे
1: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ मजदूरी।
0: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
1: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
1: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
0: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
1: अमरावती स्टेशन पे FM लगा रहता है, वो साइड पर सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
0: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको, जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए।
0: अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दूँ तो की बात राज रहने दो।
0: अच्छा,
1: इशारों को इशारों बैठे।
0: हाँ, ये कव्वाली है।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब
0: और आशा भोसले की आवाज में।
1: आशा भोसले और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आएगी, फिल्म कव्वाली दीदी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है।
1: और रेखा और नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867-0288, 0224-0024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल

ढोलक की थाप दूर दराज के महलों तक सुनाई दी। जब उसे खबर मिली तो वो भी पहुंचा। खिड़कियों दरवाजों से झांक झांक कर उसकी नजर पकड़ने की कोशिश करता रहा। मेहंदी सजी दुल्हन तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। एक सहेली दुल्हन के लिए चाय की प्याली लेकर आई। उसने तो मांगी नहीं थी। सहेली की आंख ने झपक कर कहा, पी लो, कप में पैगाम भी है। कप की तह में उसने अंगूठी रखकर भेजी थी। अंगूठी होंठों से पी ली और उंगली में पहन ली। सहेली की मेहंदी लगी हथेली पर उसने लिखकर भेज दिया, उसी सनसेट पर मिलना जो पुल पर मिला था। लेकिन संदेशा पहुंचा नहीं, वो जा चुका था। पल भर में सब बदल गया और कुछ भी नहीं बदला। जो बदला था वो तो गुजर गया।

0: भूपेंद्र सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गुलजार साहब का ये कलाम।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

किशोरी अमोनकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। कार्यक्रम में आप सुनिए अभिजीत की आवाज में एक गैर फिल्मी गीत। रचनाकार हैं सुब्रत और संगीतकार सप्तऋषि।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अनूप जलोटा के संगीत निर्देशन में हम आपको हरीश चंद्र का लिखा ये भक्ति पद सुनवा रहे हैं। आवाज पामेला सिंह की है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आइए आप सुनते हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाजों में ये गजल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।

0: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
1: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनिए ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है।
4: भूपेन हजारिका की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलजार साहब की ये रचना।

ये आवाज थी भूपेन हजारिका की। और आइए अब सुनते हैं कैलाश खैर की आवाज में ये ओगार फिल्मी गीत।

0: डीवी पलुस्कर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ दो या तीन डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एक क्लब स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम।

0: गृह मंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ खास गीत। जी हाँ, आज जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में हमने जरीना वहाब की फिल्मों से ही कुछ गीत चुने हैं, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सावन को आने दो, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था गौहर कानपुरी ने और धुन बनाई थी राजकमल ने। और ये आवाज है रूना लैला की, फिल्म का नाम घरोंदा, नक्श लायलपुरी की रचना और जयदेव की धुन

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
3: का ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
6: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
7: सुनिए
8: कार्यक्रम का अगला गीत। यशुदास की आवाज में फिल्म चितचोर से हमने लिया है। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन हैं।

यशोदास की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चितचोर का ये गीत। और लीजिए अब सुनिए एन दत्ता का संगीत, पंडित भरत व्यास के बोल, आवाज सुमन कल्याणपुर की, और फिल्म का नाम

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए गुलजार साहब की लिखी रचना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने और ये फिल्म है सितारा।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज आप सुन रहे हैं अभिनेत्री ज़रीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं फिल्म नैया का गीत, इसे आवाज

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म दहलीज का दो गाना सुनिए, स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के हैं, गीतकार हैं हसन कमाल और संगीत रवि का है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हमने नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ चुना है। इसे संगीत में डाला है जयदेव ने, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक और एक 11। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने वाले हैं। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोसले। शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इसी कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुलक्षणा पंडित और साथियों का गाया हुआ फिल्म जज्बात का गीत, शब्द महेंद्र देहलवी के और धुन राजकमल की।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने मशहूर अभिनेत्री जरीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत सुने थे।

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इसमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज से 2 दिवसीय नागौर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री आज तिलानोश गांव में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में शामिल होकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उनका रात्रि विश्राम भी गांव में ही रहेगा। कल प्रातः भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के सहयोग का आग्रह करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित कराने का कार्यक्रम है। सरकार को उम्मीद है कि सर्वदलीय बैठक के माध्यम से विभिन्न दलों के बीच सहमति बनाकर संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित की जा सकेगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महिलाओं को विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन आवश्यक है। ये बात उन्होंने आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत में कही। श्री शेखावत ने कहा कि बढ़ती आबादी के कारण लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्त नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं। श्री शेखावत ने आरोप लगाया।

बताया कि जब पहले महिला आरक्षण विधेयक लाया गया था तब विपक्ष का रुख महिलाओं के हित में नहीं था। संसद के आगामी मानसून सत्र में ये मुद्दा फिर से उठेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आज विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्याय का समर्थन करने, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने और विश्व की शांति, सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डालने वाले अपराधों को रोकने में मदद करने के इच्छुक सभी लोगों को एकजुट करना है। ये दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि एक न्यायपूर्ण, समान और करुणामय समाज का निर्माण करना सबकी साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से समान अवसरों, निष्पक्ष व्यवस्था और मानवीय गरिमा के सम्मान पर आधारित समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया, जहां हर नागरिक को न्याय प्राप्त हो सके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर दिया है। ये सुविधा कल से 24 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। आयोग के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2026, निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स परीक्षा 2025 तथा निरीक्षक कारखाना केमिकल परीक्षा 2025 के अभ्यर्थी नाम, पिता के नाम, फोटो, जन्मतिथि, जेंडर को छोड़कर अन्य विवरणों में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

प्यार का सागर। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम जिसका दो गाना अभी आपने मुकेश और आशा भोंसले की आवाजों में सुना। गीतकार प्रेम धवन थे और संगीतकार थे रवि।

0: और हाँ, हम देखिए ना, इतनी खुशी में आज की इबारत आपको बताना ही भूल गई, क्योंकि जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि आज की इबारत क्या है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं, उसी इबारत को पढ़ने के बाद उन्होंने समझा कि आज का ये जो सुरीला सफर है उसमें क्या होने वाला है। हाँ, हम अपने नए श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि www.facebook.com/bbsmumbai पर जाकर आप विविध भारती परिवार की जो टीम है, सदस्य हैं, उससे जुड़ सकते हैं, यानी विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, अपने विचार हम तक लिख सकते हैं। तो आज की इबारत है कि प्यार का सागर जब किसी की आंखों में उमड़ता है तो दिल किसी गहरे एहसास से लबालब हो जाता है, आंखों ही आंखों में बातें होने लगती हैं। यकीनन जब प्यार किसी से होता है तो प्यार का मौसम प्यार ही प्यार बरसाता है। आशिक दिल कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है, कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। सुनो, दिल ने फिर याद किया है तुम्हें, हाँ अब वो दिन दूर नहीं, बस समझो लग गई है महबूब की मेहंदी तुम्हारे हाथों में, यादों की बारात लेकर हम आ रहे हैं तुम्हारे राजकुमार। और हमारे श्रोताओं ने भी हमारी इबारत पढ़ने के बाद अपने विचार हम तक लिखे हैं। आप लिखते हैं कि आज गद्यांश पूरी तरह प्यार का सागर लेकर आया है। प्यार का एहसास एक ऐसी दिव्य और भावपूर्ण अनुभूति है जो जीवन को असीम लालित्य, सुंदरता और सार्थकता प्रदान करती है। ये केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा का एक स्पंदन है जो दो हृदयों को एक अदृश्य डोर से बांध देता है। प्यार मन को कोमलता, धैर्य और गहरी शांति प्रदान करता है, जिससे जीवन की आपाधापी भी एक मधुर संगीत सी प्रतीत होती है। इसके प्रभाव से ढलते सूरज की किरणें, बारिश की बूंदें और हवा का हर झोंका एक काव्यात्मक रूप ले सकता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का एहसास सपनों का राजकुमार, हाथों में मेहंदी, कुछ उमड़ते जज्बात और उस पल सिर्फ बस प्यार ही प्यार। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी एक छोटी सी सुखांत लघु कथा लग रही है। एक अनुरागिनी किशोरी है, उसके दिल में समाया प्यार का सागर आंखों में उतर आता है। उस मुग्धा की आंखें बोल उठती हैं, धीरे धीरे प्यार की रुत हमारे बाहर ले आती हैं। दिल बेकरार होता है, प्रीतम के बिना कुछ भी प्यारा नहीं लगता। और फिर वो दिन भी आता है जब यादों की पालकी में बैठकर अपने राजकुमार के नाम से लगी मेहंदी निहारते हुए उस प्रेमिका युवती का इंतजार संपन्न हो जाता है। इतनी सहज सुंदर प्यार भरे स्वप्निल अनुभूति के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी इबारत लिखने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि चाहत की नदियां जब दिल के साहिल से टकराती हैं तो रूह में एक अजीब सी हलचल मच जाती है, खामोश निगाहें भी तब धड़कनों का हाल बयां करने लगती हैं। सचमुच जब जिंदगी में किसी खास की आमद होती है तो फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की खुशबू महकने लगती है, तब बेकरार दिल बस यही पुकारता है, ओ मेरे दिल के चैन तुम्हारे सिवाय इस जहां में मेरा कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। बहुत सुंदर आपने अपनी बात लिखी है, अपनी तहरीर लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि तेरे नैनों की गहराई में उतरा हूं, जब से लगता है ये दिल बन गया है, जैसे कोई प्यार का सागर बहती है जहां सदा अश्कों और जज्बातों की लहरें, मैं गा रहा हूं बस यही धुन, तू ही प्यार का सागर है, जब से छाई है तुम्हारे हुस्न की ये बहार, बदल सा गया है हर मौसम, बन गया है प्यार का मौसम मेरे राजकुमार, सज गई है हाथों में तुम्हारे चाहत की लकीर, जैसे सजी हो मेरे महबूब की मेहंदी, देखा दुनिया की इस भीड़ में गुम है मेरी दुनिया, क्योंकि मेरी आंखों में बसा है सिर्फ प्यार ही प्यार, खोया रहता है मैं अब तो बस तुम्हारे ख्यालों में, और दिल गुनगुनाता है चांद की चमक हुए तारों की छांव, इन हसीन नजारों में तुमसे अच्छा कौन है, तुम्हारी इस दिलकश अदा पर फिदा है सारा जहां, बस एक ही धड़कन गूंजे तुमसे अच्छा कौन है। अरे वाह, हम भी आपसे ये कहेंगे कि हमारे श्रोताओं से अच्छा कौन है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और सुनते हैं आज का ये दूसरा शीर्षक गीत। आवाजें आशा भोंसले और किशोर कुमार की है, फिल्म का नाम है आंखों ही आंखों में, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।
1: आँखों आँखों में।

जी, तो ये गाना था फिल्म आंखों आंखों में का। आवाजें आशा भोंसले और किशोर कुमार की थी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लालायत दिलों को लुभाती, प्रेम रस से लवरेज इबारत है, हुस्नो इश्क को प्रीत की रीत का राहत दिखाती है। प्रेम रोग से पीड़ित दिलों को राहत प्रदान करते हुए प्रेयसी के हाथों की मेहंदी सजाकर अंततो गत्वा सुखद समापन करती है। यादों में ही सही बारात का जिक्र प्रेमी युगल को लाभान्वित करेगी। प्रेमारंभ से प्रेम बंधन तक का सफर तय करने का सुखद अनुभूति प्राप्त करने की हसरत लिए हम श्रोतागण भी आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप इंतजार करते हैं हमें पता है, और इस सुरीले सफर में हमारे साथ रहते हैं अंत तक, हमें ये भी पता है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर आज की इबारत हमारे सभी श्रोताओं ने भेजी है, किसे पढ़ूं किसे नहीं समझ होता है, कई बार ऐसा लगता है क्या पढ़े और क्या ना पढ़ पाए। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर लहरा रहा है, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। आपने अच्छा उन गीतों को आपने लिख दिया है और कहा है कि आंखों आंखों में बातें होती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और महबूब के हाथों में मेहंदी सजती है, यादों की बारात लिए सपनों का राजकुमार आता है। आज की इबारत एक पूरी प्रेम कहानी है जिसे हम सभी श्रोता आज की प्रस्तुता हमारे नाम से लिखा है आपने के मुखारविंद से सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, और आप इस वक्त मुझे सुन भी रहे हैं, हमें सुन रहे हैं विविध भारती के जरिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सब गाने लिख दिए गए हैं, इसलिए आज का सुरीला सफर बहुत ही आसान हो गया है। हमने आपसे क्या कहा था कि चलिए इस आसान सफर में हमारे साथ चलिए, आज डरिए मत, कहीं कुछ नहीं है, कांटे पथरीले पथ कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, सरल है।

तैयार हो गए हैं ना हमारे साथ चलने के लिए? कुछ श्रोता तो हमारे साथ चल भी दिए हैं। देखिए आप लिख भी रहे हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तो आंखें ही दिल की आवाज बन जाती हैं, बिना कुछ कहे अनगिनत बातें हो जाती हैं, मेहंदी का रंग, यादों की बारात और दिल की पुकार, सब मिलकर यही कहते हैं कि सच्चा प्रेम एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। यही इस इबारत का सबसे कोमल और दिल को छू लेने वाला एहसास है। नींद कहाँ आती है जब लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में। और अब हम आपसे दो सवाल करने वाले हैं जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है ना? हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि आपको कौन से या कौन सा एक शीर्षक गीत का नाम लिखकर भेजिए। कौन सा शीर्षक गीत है जो आपको बेहद पसंद है? और हमारा दूसरा सवाल कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत वर्ष 1949 यानी 1949 में आई एक फिल्म में लिखा गया था, तो आपको बताना है कि वो फिल्म कौन सी थी और इसके गीतकार कौन थे, क्योंकि वो आगे चलकर महान गीतकार कहलाए। और सबसे बड़ी बात कि 1949 में आई इस टाइटल ट्रैक की सफलता इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन बहुत तेजी के साथ चलना शुरू हो गया था। तो आपको बताना है कि 1949 में आई इस फिल्म का नाम क्या है और उसके महान गीतकार कौन थे। तो अगला गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म का, आवाज हमने लता मंगेशकर की चुनी है, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये शीर्षक गीत सुना। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज पहली बार मंदाकिनी जी की इबारत भी लंबी है। लंबी इबारत हो तो मैं कार्यक्रम नहीं सुनता, पर आज अवश्य सुनूंगा, क्योंकि मंदाकिनी जी की अविरल कलकल बहती नदी जैसी आवाज की वजह से क्या बात है। जैसे अरे लता मंगेशकर जी का हर गाना सुना जा सकता है उनकी आवाज की वजह से, चाहे गीत के बोल और संगीत कैसा भी हो, तब कोई भी गाना बुरा नहीं लगता। उसी प्रकार लंबी इबारत को भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन केवल आज तक। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन एक बात बताइए, इबारत तो बहुत छोटी सी थी। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितनी कम शब्दों में अपनी बात कही जाए वो ज्यादा बेहतर, और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हमारी इबारत थोड़ा सरल हो, ताकि हमारे श्रोता जो है परेशान नहीं हो और इस सुरीले सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहे, है ना। एक श्रोता ने लिखा भी है इसके बारे में, आगे मैं उनके विचार पढ़ने वाली हूँ, बड़ा ही मस्त लिखा है उन्होंने। वहीं एक श्रोता अभी लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम भीगतावासा प्यारा सा है, नमस्कार आपको, हमारा आज की इबारत तो पूरी प्यार से भरी है, आपके साथ दोपहर 1 बजे मजा दोगुना हो जाएगा, और आपने आज के टेक्स्ट से निकलने वाले संभावित शब्दों पर गाने भी लिखे हैं जो लगभग मुझे लगता है सारे ही सही हैं, ऐसा लग रहा है। एक आध गाना शायद नहीं हो सकता, बाकी आप खुद चेक कीजिएगा कि हमारी जो गानों की आज महफिल में हमने चुने हैं गीत, वो आपके गीतों से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्रेम की गहराई का वर्णन खूबसूरती से किया है, फिल्मों के नाम को जोड़कर सुंदर गानों से इस एहसास को और मजबूत किया गया है। आपने भी फिल्मों के बहुत सारे नाम लिखे हैं, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा तू प्यार का सागर है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये गाना फिल्म सीमा का है ना, और हमने आज चुना है शीर्षक गीतों का कार्यक्रम, यानी प्यार का सागर जब हमने गीत बजाया था तो उसकी फिल्म का नाम भी था प्यार का सागर, है ना, समझ आए ना आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्यार का सागर उमड़ने वाला है, वो भी किसी की आंखों में, और फिर आंखों ही आंखों में बात होगी, तो प्यार की बरसात होना बहुत ही लाजमी है। दिल आशिकाना होकर किसी को याद करेगा तो महबूब की मेहंदी सुंदर हाथों में लग जाती है, क्योंकि यादों की बारात लेकर राजकुमार जी आने वाले हैं। प्यार का सागर देखा है किसी के, ये गीत तो जरूर बजना चाहिए, बज भी गया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में फिल्मों के नाम और गीतों की पंक्तियां हैं, ये केवल हमारी भावनाओं का आईना ही नहीं बल्कि प्रेम की सच्ची भाषा है। इनमें प्रेम की मिठास, बिछड़ने का दर्द, मिलने की खुशी, यादों की गर्माहट है। जब दिल में प्यार का सागर हो, हाथों में महबूब की मेहंदी का रंग हो, साथ में यादों की बारात हो, तब जिंदगी किसी खूबसूरत फिल्म से कम नहीं होती। कितना सुंदर लिखा है आपने, और मुझे लग रहा है कि जब आज प्रेम उमड़कर आया है इस सफर में, तो लोगों के दिल से प्रेम की बौछारें होने लगी हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम हमारी जरूरत है, ये प्यार है ना, ये स्नेह, ये इश्क, अलग अलग तरीके से किया गया जो प्यार है, अलग अलग रिश्तों में किया गया प्यार है, लेकिन मूल भाव उसका है प्यार, जिसकी हर इंसान को, हर प्राणी को बहुत जरूरत है। आप देखिए आपने कितने सुंदर विचार लिख डाले हैं आज प्यार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यार का मौसम फिल्म का ये शीर्षक गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इससे पहले हम अपने सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमने आपसे पूछा था छोटा सा सवाल कि आपको कौन सा शीर्षक गीत पसंद है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है, और हमारा दूसरा सवाल ये था कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत 1949 में आई एक फिल्म से लिखा गया था, आपको बताना है ये फिल्म जो 1949 में आई थी वो कौन सी थी, इसके गीतकार जो कि महान गीतकार कहलाए वो कौन थे, क्योंकि उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी। इतना हमने आपको क्लू दे दिया है, हिंट दे दिया है, और हाँ 1949 में आई इस जो टाइटल ट्रैक की सफलता हुई वो इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन तेजी के साथ शुरू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।

ये है फिल्म का नाम प्यार का मौसम, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

हमारे श्रोता का लिखना है कि आज कुछ इस प्रकार के गीत बजने वाले हैं जो कि दिल की गहराइयों को छू जाएंगे, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गहराई से इस बात को समझा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत की पहली सवा दो लाइन में चार फिल्मों के नाम और फिल्मी गीत लिखे गए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो इबारत में ही कई फिल्मों के नाम है, अब देखना है कि गीत

कौन से सुनने को मिलते हैं। तो आपने देख लिया, सुन लिया ना कि आज हमने कौन से गीत चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत पसंद आई, कम से कम फिल्मों के नाम तो क्लियर हैं, दिमाग को मेहनत कम और सुकून ज्यादा मिलेगा, ज्यादा उलझी हुई इबारत देने की कोई जरूरत भी नहीं होती है, ये गीतों के आनंद देने का लेने का कार्यक्रम है, कोई एमए हिंदी का पेपर नहीं जहां अनसीन पैसेज हल कराया जा रहा हो। अरे आपने इतना गंभीरता से ले लिया इस बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कार्यक्रमों में जब भी कोई इबारत लिखी जाती है तो गानों के आधार पर ही लिखी जाती है। कई बार आपको लगता होगा कि इबारत बहुत कठिन है और इसमें कौन से गाने बच जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब आपको हिंट दी जाती है कुछ इबारतों में कि आज क्या बजने वाला है ना, तो इसे आप हिंदी का पेपर, एमए हिंदी का पेपर नहीं समझें। ये वाकई एक दिलचस्प प्रोग्राम है जहां सिर्फ हमें उस सुरीले सफर का आनंद लेना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से हमने जो शब्द चुना वो है प्यार। प्यार के बिना तो पूरी इबारत मानो सुनी। प्यार शब्द ने इस इबारत को बड़ा ही प्यारा बना दिया है। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जितना इसे बांटा जाए उतना ये दिलों में बढ़ता है। कुछ एहसास शब्दों में नहीं समाते हुए बस मुस्कान बनकर, चेहरों पर अपनत्व बनकर रिश्तों में उतर जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस अपनापन मांगते हैं। दो मीठे शब्द, एक सच्ची मुस्कान और दिल से निकला एहसास। बहुत गहरी बात आपने लिखी है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जब दिल में प्यार का सागर उमड़ता है तो आंखों में ही अनकही बातें होने लगती हैं। फिर जीवन में प्यार का मौसम दस्तक देता है और मन बरबस कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है। बिछड़ने और मिलने के बीच भी दिल ने फिर याद किया कि मधुर धुनें दिल में गूंजती रहती हैं। जब रिश्तों की डोर और गहरी होती है तो हाथों में मेहंदी सजती है और खुशियों की यादों की बारात साथ लेकर सपनों का राजकुमार जीवन में प्रवेश करता है। यही तो प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इबारत पेश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार कोई बड़ा इजहार नहीं बल्कि छोटी छोटी परवाहों का नाम है। किसी की मुस्कान की वजह बन जाना, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना, हर हाल में उसका साथ निभाने की चाह, यही तो सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान। एक प्यारी सी बात, सच्चा प्यार फूलों की खुशबू की तरह होता है, उसे जोर से पकड़कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका एहसास लंबे समय तक दिल में महकता रहता है। सच मानिए, आपका ये प्यार भी हमारे दिल में महकता है। और देखिए, इसलिए तो हम अब जो गीत लेकर आए हैं उसमें सिर्फ प्यार होगा। हाँ, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

जी हाँ, हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि शायद आपका जो सवाल है कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया, शायद फिल्म बरसात है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन ये गीत हो सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया का सबसे पहला शीर्षक गीत फिल्म बरसात से था और इसके गीतकार थे शैलेंद्र। जी हाँ, और वहीं श्रोताओं ने और भी अपने सवालों के जवाब में लिखा है कि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की फिल्म साजन जब रिलीज होने वाली थी उसके थोड़े दिन पहले ही साजन फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखा गया और फिल्माया गया और फिल्म में डाला गया था, यानी ये गीत इन्हें बेहद पसंद है फिल्म साजन का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गाना है फिल्म नजराना का, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही प्यारा गीत चुना है। एक प्यासा मुझे मैखाना दिए जाता है, जाते जाते भी ये नजराना दिए जाता है। बहुत सुंदर गीत है रफी साहब की आवाज में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शायद 1949 आई फिल्म बरसात पहली फिल्म थी जिसमें शैलेंद्र जी ने बरसात में जब मिले हमसे तुम सनम तुमने ये गाना लिखा था। बिल्कुल सही जवाब है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सर्वाधिक शीर्षक गीत लिखने का रिकॉर्ड भी शैलेंद्र के नाम पर ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों के जवाब हैं बूंद जो बन गई मोती, ये शीर्षक गीत सटीक इसलिए बहुत प्यारा लगता है, यानी बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का जो गीत है वो आपको पसंद है शीर्षक गीत। वहीं आप लिखते हैं कि दूसरा बरसात में हमसे मिले तुम सजन 1949 का पहला शीर्षक गीत है और गीतकार थे शैलेंद्र। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 में सबसे पहली फिल्म बरसात में शैलेंद्र जी ने बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम इस गीत की रचना की थी, जिसे शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सरल और प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात शीर्षक गीत मुझे पसंद है, पर इसके अलावा भी पसंदीदा गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है, हम आपके हैं कौन ये गाना भी हमें बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 की प्रथम टाइटल संगीत राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बरसात में मिले हमसे तुम सजन ये गीतकार शैलेंद्र की रचना है जो सबसे पहली मानी गई है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गीत है दिल मेरा एक आस का पंछी, बहुत सुंदर गीत है ये। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने मेरा मनपसंद गीत जब प्यार किसी से होता है बजा ही दिया है, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और एक श्रोता को दीवानो अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन मैं हूं डॉन डॉन, यानी डॉन फिल्म का गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि अखियों की झरोखों से आश्चर्य की बात है कि

की आंखों की ज्योति बचपन से बुझी हुई थी, ऐसे महान गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन ने इसकी रचना की। ये गाना टॉप गाना था और इन्हें बहुत पसंद है ये गाना। और एक श्रोता को यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, जो हमारी लिस्ट में शामिल है, ये गाना बेहद पसंद है। और एक श्रोता को सफर फिल्म का गीत है जिंदगी का सफर, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, बहुत पसंद आता है। वहीं श्रोताओं को बहुत सारे गीत पसंद आए हैं, किसी को महबूब की मेहंदी फिल्म का टाइटल गीत बहुत पसंद है और किसी श्रोता को दिल एक मंदिर का टाइटल गीत पसंद है। वहीं श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों का उत्तर हमने दे दिया है, फिल्म बरसात और सवाल के उत्तर यानी शैलेंद्र। अरे हमने कोई प्रश्न पत्र थोड़ी रखा, ये तो हमारे कार्यक्रम के सवाल हैं जो हम सभी पूछते हैं अलग अलग तरीके से। कभी पूछा जाता है कि इस फिल्म का नायक कौन है, कभी पूछा जाता है नायिका कौन है, इस फिल्म में क्या था, आपने इस फिल्म को क्या देखा। तो हमारा सवाल भी इसी तरह से होता है कि आपकी पसंद का कोई शीर्षक गीत हो तो बताइए, या हमारी फिल्मी दुनिया में पहला शीर्षक गीत कब लिखा गया। तो इस तरह से ये सवाल जवाब ही इस कार्यक्रम को, इस सफर को अच्छा बनाते हैं, ऐसा हम मानते हैं और यकीनन आप भी मानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का शीर्षक गीत, रचनाकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा।

तुम जान हो दो आलम की और जान हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुम से आज

पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा।

परती ऐ दिल रंगीन शहर भी होगी। जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा।

जी, तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुहाना सफर में सबसे शुरू हुआ नियमित सुनता हूँ, इसमें बार बार वही घिसे पीटे गीत और विषय रिपीट हो रहे हैं। 70-80 के दशक गीत बिल्कुल नकार दिया, वही सुनकर बोरियत लगती है, जिसमें रहस्य शिक्षा प्रेरणा हो वर्तमान जीवन को लाभान्वित करे। आपको क्या आज के गीत भी पसंद नहीं आए? बताइएगा हमें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसे गीत बजाए जाएं जो आपको अच्छे लगते हैं और कार्यक्रम में रोचकता लेकर आए, है ना। आज के गीत आपको कैसे लगे इसके बारे में बताइएगा। हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से न मिलती हो, लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा बहुत ही सकारात्मक होता है कि हमारे श्रोताओं का हम उद्घोषक कितना अच्छा मनोरंजन कर सकते हैं, वही कोशिश हमेशा यानी हर बार होती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जब तक खुद को प्यार का सच्चा मतलब न पता हो तो प्यार महबूब महबूबा मौसम झरना पानी पहाड़ फूल सावन ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जब सच्चा प्यार होता है तो इन शब्दों में पूरा जीवन दर्शन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सुरीला है, मैं ट्रेन का सफर कर रही हूँ, ये सफर और साथ में विविध भारती का साथ सफर और भी सुरीला हो गया है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, बादल भी लुका छिपी खेल रहे हैं, बहुत सुंदर। आप कार्यक्रम भी सुन रही हैं और प्रकृति को भी महसूस कर रही हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर जब आंखों में उमड़ता है तो दिल गहरे एहसास से लबालब हो जाता है और तब यहाँ हृदय की भाव विवल अवस्था बन जाती है, जहाँ प्रियतम प्रेम में रस की अनुभूति को गहराई से महसूस करने लगता है और उनके आपस में संवाद शब्दों से नहीं होते, क्योंकि इस परिस्थिति में शब्द मौन हो जाते हैं। आंखों आंखों में जो संवाद होता है उसकी अलग भाषा होती है और किसी भी व्याकरण की सीमा से परे भाषा होती है। न कोई अल्प विराम न पूर्ण विराम, बस आंखें बोला करती हैं और आंखें ही सुना करती हैं। क्या बात है, बहुत खूब। यहाँ प्रेम की अवस्था दिव्य रोशनी के साथ उनके प्रेम को एक अलौकिक आनंद से परिपूर्ण कर दिया करती हैं। यहाँ एक गीत की पंक्तियाँ साझा कर रहा हूँ। होठ झुके जब होठों पर सांस उलझी हो सांसों में, दो जुड़वा होठों की बात कहो इन आंखों में, मेरी जा मुझे जा न कहो। अरे वाह, फिल्म अनुभव का गीत आपने लिखा है और बहुत ही सुंदर आपने अपनी बात अपनी इबारत लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और महबूब की मेहंदी हाथों में लगा लेते हैं। आवाजें लता मंगेशकर, हेमलता और साथियों की, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बोली।

जी तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज आपके द्वारा प्रस्तुत की गई इबारत और गीतों में प्यार ही प्यार से लबालब है और झलक रहा है। मेरी माता रानी से तहे दिल से प्रार्थना है कि सभी की झोली और जीवन में सच्चा प्यार बढ़े, ये मेरी दुआ है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत आपकी मधुर उत्स्फूर्त पेशकश और सभी शीर्षक गीतों को हम शीर्षक दे रहे हैं परिपूर्ति। वाह क्या बात है, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई एक गीत नहीं अपितु विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार के गीत हमें प्रिय हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि से अच्छा कौन है, बल्कि विविध भारती से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर अपने पूरी रफ्तार से मुकाम की ओर है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं और उन सभी श्रोताओं से हम थोड़ा सा माफी मांगते हैं कि उनकी जो पसंद है उन्होंने लगातार, बहुत सारे श्रोताओं ने अपने शीर्षक गीतों की पसंद हम तक लिखी है, लेकिन कार्यक्रम में समय का अभाव है, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम उन बातों को शामिल करें। बहरहाल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, अंतिम पेशकश ये है।

ये आवाजें किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था यादों की बारात। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।

जी हाँ, हमारे आंगन में भी इसी तरह हम नाचेंगे गाएंगे और नए सुरीले सफर पर फिर निकल पड़ेंगे किसी एक दिन और, है ना। तो तब तक के लिए, यानी उस नए सुरीले सफर में चल

जी हाँ, हमारे आंगन में भी इसी तरह हम नाचेंगे गाएंगे और नए सुरीले सफर पर फिर निकल पड़ेंगे किसी एक दिन और, है ना। तो तब तक के लिए, यानी उस नए सुरीले सफर में चलने तक के लिए, मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

0: Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana, also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz. European Union expresses serious concern over human rights situation in Pakistan, asks Islamabad to comply with international commitments to access trade benefits. IMD forecasts heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha today, and in badminton, Indonesia's shuttler PV Sindhu enters semi-finals of Japan Open in Tokyo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
2: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
3: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं,

0: साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूं।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरु मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
3: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी।

0: मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

फिल्म काला बाजार का गीत था ये, आवाज आशा भोंसले की थी, शब्दकार शैलेंद्र थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। ये आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है जिस देश

में गंगा बहती है। गीतकार हजरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया
1: एक और आ गया
3: जल्दी बुलबुल।

0: डॉक्टर, कोई और भी कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
1: अरे ललन मियां आप
0: हैं?
1: काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गर्लफ्रेंड का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उनका नाम है चांद मेरे आजा, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार आई एस कपूर हैं और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था चांद मेरे आचा। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम की अगली पेशकश इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म बिंदिया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, रोशन का संगीत, प्रेम धवन की रचना, आवाज आशा भोसले की, और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में फिल्म वल्लाह क्या बात है का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ, जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजोकर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं मनीतू बोल रही हूँ जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, आप जोधपुर से बोल रहे हैं यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
1: मैम जोधपुर का तो मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है।
0: मिर्ची बड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है।
1: और मैडम बारिश के मौसम में आप खाओगे ना जब वहाँ पे खड़े खड़े, तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खा लूं। हमारे
0: ये तो होता है, ये तो होता है। तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम आप आइए मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे अच्छा पैलेस देखिए, उम्मीद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मीद भवन बहुत सुना है इसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियाँ ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की, तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम ले।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: एक बड़ी वाली है हर्षिता और छोटी वाली है पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता का आज 7th मंथ का बर्थडे है।

0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ छोटी सी पुलकिता को। बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। हर्षिता का भी और पुलकिता का भी, बहुत
1: दादा
0: प्यारा
1: ने
0: नाम।
1: नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था,
0: हाँ जी,
1: तब सेकंड हुई है, तो
0: अच्छा
1: बोले
0: अच्छा
1: पुलकिता रखेंगे इसका।
0: वही मतलब वही है, हर्ष उत्तर और पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं घर का काम करती हूँ।
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो
1: मैं
0: डांस भी हो
1: हॉस्पिटल में
0: सकता है।
1: जॉब करती हूँ, सरकारी
0: अच्छा, आप जॉब करती हैं।
1: नौकर,
0: अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी में?
1: नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारी कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी मतलब अलग अलग चीजें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। तो आपको क्या पसंद है?
1: मैम गाना तो मेरे को देखो इतना आता नहीं, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, वो साथ साथ वैसे गा लेते हैं, पर वो वाली सिंगिंग नहीं,
0: अच्छा
1: लेकिन डांस का है तो वो शौक होता है, कभी कभी कर लेते हैं घर पे।
0: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से
1: बिल्कुल
0: ये अच्छी चीज है। ये इस तरह की जो जो चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए, है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: थोड़ा
0: हम
1: माइंड
0: जो
1: फ्रेश करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहां पे, जो जॉब की परेशानियां होती हैं, वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना।
1: बिल्कुल मैडम जी,
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बारिश का मौसम है, मानसून सीजन है, तो मेघा रे मेघा रे।
0: अरे वाह, क्या गाना सुनाया आपने, बहुत बढ़िया गाना है। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं।
1: मैं केकता शेख बोल रही हूँ, गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप।
1: जी
0: तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है। पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहां पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहां आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं,
0: अरे
1: ड्रेस
0: वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहाँ के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज्यादा, है ना।
1: वहाँ के कपड़े बहुत मशहूर है,
0: अच्छा,
1: सब दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: बहुत
1: उन्होंने
0: अच्छी
1: की
0: बात है।
1: फिर नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन
0: हाँ
1: सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुंचा देना।
0: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा।
1: मैडम मैं तो खाने में बिरयानी है, ऐसी चीजें खा लेती हूँ, बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
0: अच्छा, तो चलिए और बताइए आपके घर में कौन कौन है।
1: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है,
0: अरे वाह, तो सब लोग साथ
1: मेरी
0: में
1: जो
0: रहते
1: शादी
0: हैं।
1: जी मेरी जो शादी नहीं है, मेरी
0: हाँ,
1: दीदी की हो गई है।
0: अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है।
1: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडी गार्ड का, तेरी
0: अच्छा, आपको बॉडी गार्ड का गाना सुनना।
1: कहानी है मुश्किल।
0: अच्छा ठीक है, तो आपके पसंद का हम ये गीत सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे ही बेटी का नाम भी आरती ही है।
0: अच्छा।
1: और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया। तो बहुत मजा आता है उसको।
0: अच्छा।
1: इसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा, तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी बेटी मन बुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती।
0: अच्छा।
1: और थोड़ी मन बुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी इसकी बर्थडे हुई गई।
0: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और
1: हाँ।
0: बताइए अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या रहती है?
1: मैडम, उसको तो क्या है कि नख जो है ना वो रंगोना शायद भी उखड़ जाए ना तो नख पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है।
0: अच्छा, तो अच्छा लगता है उसे तैयार होना अच्छा लगता है?
1: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा 2 टाइम नहाना, खाना तो जो मांगे वो देना,
0: बहुत बहुत अच्छी बात
1: ही
0: है।
1: शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है अपने अपने आप से प्यार करना, है ना? अपने आप से प्यार करना सबसे पहले जरूरी होता है और बहुत अच्छी चीज है। वो सजती है, संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है ये।
1: क्या है कि मेरा एक लड़का है बड़ा, और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है, और अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका।
0: अच्छा अच्छा,
1: आजीवा रोड पे।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
1: नहीं, ये सब नहीं। उसको तो क्या है कि वो गाना रेडिया वो सब
0: अच्छा।
1: बहुत पहले से सुनती रहती है। वो सलमान खान बहुत अच्छा लगता है, तो तेरे नाम का गीत सुनती है वो।
0: अरे वाह,
1: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाए।
0: अच्छा, यानी उसे संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको एक बहुत अच्छी थेरेपी भी है।
1: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाते।
0: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए, आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
1: आरती को पसंद है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहली
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे
1: सकीना
0: वाह,
1: है मेरा नाम, सकीना जी।
0: अच्छा सकीना जी बोल रही हैं और
1: जी
0: बारामूला
1: मैं
0: कश्मीर से बोल रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो
1: जी
0: बताइए अब
1: मैं
0: अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है कश्मीर का पश्मीना। एकदम नाम
1: जी
0: जुड़ा हुआ
1: मैम,
0: है कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी जी जी मैम
0: जी तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरी 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना?
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं? मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में जब कोई काम सब
1: जब
0: निपट जाता है घर का?
1: खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते ना, हम घर का काम खत्म करके बस यही
0: हाँ
1: करते हैं।
0: नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा आप इसे पश्मीना का क्या मतलब शॉल बनाती हैं कि कोई
1: जी
0: ऊनी
1: मैं
0: कपड़े?
1: शाल बनाते हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहां तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब
1: जी जी मैम,
0: होता है?
1: बहुत कस्में होते हैं पश्मीना की। जी,
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: दो
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: कस्म के बनाते हैं।
0: अच्छा तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं और देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप
1: जी
0: ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना?
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम।
0: बहुत ज़रूरी है, अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसका आप अपने, जैसे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद
1: जी
0: कर
1: जी
0: सकें।
1: मैम।
0: तो बहुत अच्छी चीज़ है आप जो कर रही हैं, घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी मैं दिलवाले फिल्म है ना, उसका कोई भी गीत मैं सुनना चाहती हूँ।
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना?
1: जी जी मैम,
0: चलिए आपसे बात
1: थैंक
0: करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं आपको
1: यू
0: आपके
1: मैम।
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद खाटी से बोल रहे हैं।
0: तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहाँ पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है,
0: हाँ,
1: रसगुल्ला भी है, यहाँ का मुर्शिदाबाद सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा।
1: फेमस है, यहाँ का आम भी फेमस है,
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क।
1: फेमस है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते, आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ,
1: उसी में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा,
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलते हैं
0: हाँ,
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी
1: हाँ,
0: हैं, आपको लिखने का शौक है?
1: लिखती भी है। इस बार
0: अच्छा
1: भी हम भेजे,
0: अच्छा
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगाए लगी हुई है,
0: हाँ, अरे
1: और
0: वाह,
1: मेरा घर में बहुत सारी चीजें है, जो पेड़ ओढ़ है फूल का, उसी में रात को रहते हैं। उन लोग को हम दाना देते हैं,
0: बहुत अच्छी बात
1: तीन
0: है।
1: टाइम सबको दाना देते हैं हम।
0: अच्छा, तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोयम लिखिए,
1: हाँ
0: कविताएं
1: हाँ
0: लिखिए,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में समय हो चला है एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाएं, डगर डगर पर वृक्ष लगाएं।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने। बहुत अच्छी बात कही है, एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का, इंदौर से। जी
0: इंदौर से बोल रही हैं आप, हसीना मंसूरी। हाँ,
1: जी
0: बहुत अच्छा लगा।
1: जी
0: बताइए कि आपको क्या पसंद है। मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी, जहां तक मुझे लगता है।
1: जी बातें भी बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक है। रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुनते हैं, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा।
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, तो अगर वो लेटर जैसा अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग समीक्षा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग, पता नहीं ऐसा हो
0: बिल्कुल
1: जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने भी सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती है मैडम मैं अधिकतर, तो ज्यादातर तो, और घर में काम भी, छुट्टी रहती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है,
0: ये तो बहुत
1: काम तो
0: जरूरी
1: नहीं
0: चीज है।
1: करना बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं।
1: ये गनी बैग का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा, तो इसमें आप क्या, मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप।
1: इसमें मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम,
0: अच्छा आप हाथ से भी कर लेती
1: रफो
0: हैं।
1: होता है। हाँ इसमें रफो होता है मैडम।
0: अच्छा, तो बहुत ही, मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है।
1: रेडियो सुनना
0: रेडियो।
1: अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको, आवाज से लग रहा है मुझे
1: गाना
0: आपकी।
1: गाना अच्छा लगता है ना मैडम, गा के बताती हूँ।
0: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
1: जी,
0: तो
1: जिनका नाम है फूल और अंगार, और मेरी फरमाइश भी यही है, और गाने के बोलने, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सही, हम बड़ागांव जिले गुना चंचल ढाकर बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा, 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है, तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको, मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनी सुनी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, सलमान खान का।
0: तो सुनवाती हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम बरथी पोस्ट कर रही हूँ, जिला चंदौली से इमरती यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आप आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे, मैं घर में रहती हूँ, फिलहाल घर का काम करती हूँ मैम। रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से। मैं
0: अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है ना,
0: हाँ,
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट। तो
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात
1: मुझे
0: है।
1: हाँ, तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
0: कौन कौन से तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
1: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ, और बाकी का हाँ, बाकी का ये है कि और भी चीजें मेरे पे आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह, ये सब
0: अरे वाह,
1: चीजें।
0: क्या बात कर रहे हैं आप! इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार हैं, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी
1: जी,
0: चीजें
1: कहते
0: खिलाती होंगी।
1: हैं ना, हाँ जी कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है ना, घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना। अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस। मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह
0: हाँ
1: है, तो मैं
0: हाँ
1: पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ
0: अरे वाह,
1: और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह।
0: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरीके की बना लेती हैं, बहुत
1: हाँ
0: अच्छी
1: जी
0: बात है ये तो। और आप ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए, और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए, ताकि हम भी आए और आपने जो बताई हैं चीजें उनका हम भी कुछ लुत्फ उठा सके।
1: अरे
0: क्योंकि बहुत
1: बिल्कुल
0: अच्छी चीज है, आपको तरह तरह की चीजें करनी आती हैं। तो बताइए मीनू जी, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: जी, मैं दो कलिया मूवी का गाना सुनना पसंद करूंगी, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गीत है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम

0: अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं, आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी बस थोड़ी ही देर के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो।

0: ऐसा वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
1: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पट्टी बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो,

0: ब्याह दोनों भाई लगकर काम करते हैं। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पट्टी बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।
1: एक धूप

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लोट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामाटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई।

थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन, हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले, दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली। उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विजू ने शादी में। विजू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन

उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता, लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी, मेरी भाभी।

विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और बिज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया। शादी के बाद बिज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी बिज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी। वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। बिज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। बिज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो बिज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। बिज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए बिज्जू की आंखों में

0: कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था। फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला, और उससे भी बड़ी बात, उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराए शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है।

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब बिज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि बिज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

बढ़िया से बात की विज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर्क ये कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये। विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए और कहां से चला था रिश्ता?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरथ को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा

दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो

भाई हो तो ऐसा ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं महिला जगत कार्यक्रम।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम महिला जगत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी सखी शिखा शर्मा। श्रोता, जीवन को बेहतर, सरल और सार्थक बनाने वाले विविध विषयों के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम महिला जगत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी सखी शिखा शर्मा। श्रोताओं, जीवन को बेहतर, सरल और सार्थक बनाने वाले विविध विषयों के साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान, प्रेरणा और नई सोच। आज के कार्यक्रम में हम ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को बेहतर, संतुलित और जागरूक बनाने में सहायक हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की जानकारियाँ। और आज की जानकारी का पहला विषय है सुखी जीवन का आधार ना उपेक्षा ना अपेक्षा। जीवन में हर व्यक्ति सुख, शांति और संतोष की तलाश में रहता है। हम बेहतर रिश्ते चाहते हैं, परिवार में प्रेम चाहते हैं और मन में सुकून चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार हमारा दुख किसी बड़ी समस्या से नहीं बल्कि दो छोटी बातों से जन्म लेता है, उपेक्षा और अपेक्षा। श्रोता, जीवन एक सुंदर यात्रा है। इस यात्रा में हम अनेक लोगों से मिलते हैं, रिश्ते बनाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, मित्र, सहकर्मी। ये रिश्ते प्रेम की डोर, विश्वास और सम्मान से बंधे होते हैं। लेकिन जब इस डोर में उपेक्षा और अत्यधिक अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं तो रिश्तों में दरार आने लगती है। श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं उपेक्षा की। उपेक्षा केवल किसी को अनदेखा करना नहीं, किसी की बात को ध्यान से ना सुनना, किसी के परिश्रम की सराहना ना करना, किसी की भावनाओं को महत्व ना देना भी उपेक्षा ही है। जरा सोचिए, एक माँ सुबह से रात तक परिवार की देखभाल करती है, सबकी पसंद का भोजन बनाती है, घर बच्चे संभालती है। लेकिन यदि दिन के अंत में कोई उससे यह भी ना पूछे कि आज तुम कैसी हो, तो उसके मन पर क्या बीतती होगी। इसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग, उन्हें महंगे उपहार नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल थोड़ा सा समय, कुछ अपनापन और सम्मान। उनकी बात ध्यान से सुनना, उनके साथ कुछ समय बिताना भी उनके लिए सबसे बड़ा उपहार बन सकता है। श्रोताओं, एक छोटी सी मुस्कान और एक धन्यवाद और अपनों के साथ बैठकर कुछ पल बिताना भी किसी के जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। अब बात करते हैं अपेक्षा की। अपेक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन जब अपेक्षाएं हमारी खुशियों का आधार बन जाती है तब समस्याएं शुरू होती है। हम सोचते हैं कि मैंने इतना किया, बदले में मुझे क्या मिला। यही से मन में शिकायतें जन्म लेने लगती है। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमें समझे, हमारी बात माने, हर समय हमारी प्रशंसा करें। लेकिन क्या यह संभव है? हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी परिस्थितियां और अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए यदि हम अपनी अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर दें और दूसरों को स्वीकार करना सीख लें तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। श्रोताओं, सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते लेन देन का हिसाब नहीं रखते बल्कि विश्वास और अपनापन निभाते हैं। इसी बात पर एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक वृद्ध महिला रोज अपने घर के बाहर बैठकर आने जाने वालों को मुस्कुराकर नमस्ते करती थी। किसी ने उनसे पूछा, आप सबको इतना सम्मान क्यों देती हैं? क्या सब लोग आपको जानते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं दूसरों के व्यवहार से अपना स्वभाव क्यों बदलूं? मेरा कर्तव्य सम्मान देना है। बदले में सम्मान मिले या ना मिले, यह उनकी सोच है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। श्रोता, भगवद गीता में भी कहा गया है, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता में मत उलझिए। जब हम बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते हैं तब मन में संतोष अपने आप आ जाता है। हमारे भारतीय संस्कार भी यही सिखाते हैं कि परिवार की खुशियाँ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से बढ़ती हैं। जहाँ संवाद होता है वहाँ विवाद कम होते हैं, जहाँ अपनापन होता है वहाँ शिकायतें कम होती हैं। श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। यदि किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम खुश हो गए, यदि किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम दुखी हो गए। लेकिन सच्चा सुख भीतर से आता है जब हम अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं और बदले में बहुत अधिक

अपेक्षा नहीं रखते, तब मन अपने आप शांत रहता है। श्रोताओं, परिवार में भी यही बात लागू होती है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझें, माता पिता बच्चों को समय दें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें, तब घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि प्रेम का मंदिर बन जाता है। इसलिए आज से संकल्प लें कि किसी की भी उपेक्षा नहीं करेंगे, अपने प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे, हम धन्यवाद कहना नहीं भूलेंगे और सबसे ज़रूरी बात कि हम अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखेंगे और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देंगे। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे, उनके सुख दुख में साथ होंगे, बदले में बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रखेंगे, तब ही जीवन सचमुच सरल, सुंदर और सुखद बन जाएगा। श्रोताओं, रिश्तों को निभाना है तो अहंकार नहीं अपनापन रखिए। मन को शांत रखना है तो शिकायत नहीं कृतज्ञता रखिए। और जीवन को सुखी बनाना है तो ना किसी की उपेक्षा कीजिए, ना किसी से अत्यधिक अपेक्षा रखिए। श्रोताओं, अब हम देते हैं अपनी चर्चा को विराम और करवाते हैं मनोरंजन एक अच्छे से गीत से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अब हमारी जानकारी का अगला विषय है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। न्याय किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ होता है, जब अपराध देशों की सीमाओं को लांघकर पूरी मानवता को ठेस पहुंचाते हैं तब वहां अंतर्राष्ट्रीय न्याय की आवश्यकता होती है। इसलिए हर साल 17 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हमें याद दिलाता है कि ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति भी कानून के ऊपर नहीं है और गंभीर मानवीय अपराधों के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। 1 जून 2010 को युगांडा में आयोजित रोम संधि की समीक्षा सम्मेलन में सदस्य देशों की सभा ने 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। यह न्यायालय मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, नरसंहार और आक्रमण जैसे गंभीर अपराधों के मामले में न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। श्रोता, वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम है दुनिया भर में न्याय, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। न्याय का अर्थ केवल अपराधी को दंड देना नहीं बल्कि पीड़ित को उसका अधिकार दिलाना, निर्दोष की रक्षा करना और समाज में विश्वास कायम करना भी है। जब किसी व्यक्ति को यह भरोसा होता है कि उसके साथ अन्याय होने पर उसे निष्पक्ष न्याय मिलेगा तभी वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। भारत की संस्कृति भी सदियों से न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रही है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया है। यही कारण है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में गिना जाता है। श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में एक और चुनौती हमारे सामने है, सोशल मीडिया पर बिना सत्य जाने किसी के बारे में गलत जानकारी फैलाना या किसी को अपमानित करना, यह भी अन्याय का ही रूप है। इसलिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनते हुए सत्य, संयम और संवेदनशीलता के साथ अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। श्रोताओं, न्याय केवल अदालतों की जिम्मेदारी नहीं, हम सभी अपने दैनिक जीवन में न्याय की भावना को अपनाकर समाज को बेहतर बना सकते हैं। परिवार में बेटा बेटी के साथ समान व्यवहार, कार्यस्थल पर ईमानदारी, विद्यालय में निष्पक्षता, सड़कों पर नियमों का पालन और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता

ये सभी न्याय के ही रूप हैं। श्रोताओं, इस दिवस को केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं मानना चाहिए, बल्कि इस दिवस को मनाने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जैसे अपराधियों की जवाबदेही तय करना, पीड़ितों को न्याय दिलाना, भविष्य के अपराधों के लिए चेतावनी, मानवाधिकारों की सुरक्षा। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस केवल अदालतों या वकीलों का दिन नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए निष्पक्षता, समानता, शांति और संकल्प लेने का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बिना न्याय के स्थायी शांति की स्थापना असंभव है। जब न्याय मजबूत होगा, तभी शांति कायम रहेगी, विकास संभव होगा और मानवता सुरक्षित रहेगी। मैनु, फिर से हम अपनी चर्चा को देते हैं विराम और करवाते हैं आपका एक और अच्छे से गीत से मनोरंजन। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, जीवन का प्रत्येक पड़ाव अपने साथ नई चुनौतियां और नए अनुभव लेकर आता है। बचपन सीखने का, युवावस्था कर्म करने का और वृद्धावस्था अनुभव बांटने का समय होता है। लेकिन यदि इस आयु में आर्थिक सुरक्षा ना हो तो जीवन की खुशियां चिंता में बदल सकती हैं। इसलिए आज विविधा में हमारा विषय है वृद्धावस्था हेतु वित्त प्रबंधन। श्रोताओं, कहा भी गया है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यही बात आर्थिक जीवन पर भी लागू होती है। यदि हम समय रहते थोड़ी थोड़ी बचत और सही वित्तीय योजना बनाते हैं तो वृद्धावस्था अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बन सकती है। वृद्धावस्था में नियमित आय के स्रोत कम हो जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ने लगते हैं। ऐसे में सबसे पहला कदम है बजट बनाना। अपनी मासिक आय और खर्च का लेखा जोखा रखें। आवश्यक खर्चों जैसे भोजन, दवाइयाँ, बिजली, पानी और दैनिक जरूरतों को प्राथमिकता दें तथा अनावश्यक खर्चों से बचें। श्रोता, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है नियमित बचत और सुरक्षित निवेश। नौकरी या व्यवसाय के समय से ही आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखना चाहिए। निवेश हमेशा अपनी आयु, आवश्यकता और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखकर करें। वृद्धावस्था में ऐसे निवेश अधिक उपयुक्त होते हैं जिसमें पूंजी सुरक्षित रहे और नियमित आय मिलते रहे। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य के लिए वित्तीय तैयारी। उम्र बढ़ने के साथ चिकित्सा संबंधी खर्च बढ़ने लगते हैं, इसलिए स्वास्थ्य बीमा और आपातकालीन निधि का होना बहुत आवश्यक होता है। यह छोटी सी तैयारी भविष्य में बड़ी आर्थिक परेशानी से बचा सकती है। बुढ़ापे में सबसे बड़ी चिंता हर महीने के खर्चों को पूरा करने की होती है। इसके लिए सुरक्षित विकल्पों में निवेश करें जहां से ब्याज या पेंशन मिलते रहे। अगर सही बैकअप ना हो तो जीवन भर की कमाई एक बार में खत्म हो सकती है, इसलिए एक अच्छी सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लें। कुछ पैसा अलग से मेडिकल बफर के लिए भी जरूर रखें। अपने सभी बैंक खातों, एफडी, बीमा पॉलिसियों और प्रॉपर्टी में नॉमिनी का नाम जरूर अपडेट करके रखें। एक स्पष्ट और कानूनी रूप से सही वसीयत बनाकर रखें ताकि भविष्य में परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद न हो। श्रोताओं, वित्तीय नियमों और टैक्स के बदलावों को ध्यान में रखते हुए किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद भी आप जरूर लें। श्रोताओं, वित्त प्रबंधन का अर्थ केवल धन कमाना नहीं बल्कि उपलब्ध संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना है। छोटी छोटी बचत, नियमित योजना, सुरक्षित निवेश और खर्चों में

उत्तोलन। ये चार आदतें वृद्धावस्था को सुखद और चिंता मुक्त बना सकती हैं। श्रोताओं, आज डिजिटल युग है, इसमें बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे उपलब्ध है। ऑनलाइन बैंकिंग डिजिटल भुगतान सुविधाजनक है, लेकिन इसके साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक पासवर्ड, एटीएम पिन, ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। किसी भी अनजान कॉल या संदेश पर भरोसा ना रखें। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा है। श्रोताओं, वृद्धावस्था में आर्थिक आत्मनिर्भरता केवल पैसों तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान से भी जुड़ी होती है। परिवार की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का आदर करें, उनकी सलाह को महत्व दें। बुजुर्ग परिवार की धरोहर होते हैं, उनके अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य मार्गदर्शन होते हैं। सरकार द्वारा भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक बचत योजनाएं, पेंशन योजनाएं और स्वास्थ्य योजनाएं उपलब्ध कराई जाती है। इन योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाना चाहिए। सही जानकारी और समय पर लिया गया निर्णय आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाता है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि छोटे छोटे सकारात्मक विचार और सही जानकारी हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, मुस्कुराते रहें। इसी आशा के साथ आपकी सखी शिखा शर्मा को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप महिला जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवानी कार्यक्रम।

हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। स्टूडियो के टाइम मशीन में वक्त हुआ जाता है शाम के 5:30, साल के 365 दिनों में ख़त्म होता हुआ दिन शुमार 198। आवाज़ आप सुन रहे हैं संतोष चौधरी की। कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं, कुछ बातें जो मैं सुनना चाहता हूं, तो थामिए मेरा हाथ और चल पड़िए सुहाने सफ़र पर इस प्रोग्राम के साथ जिसका नाम हुआ करता है दोस्तों यो वाणी। दोस्तों उम्मीद और आशा है कि आप पूर्णतः स्वस्थ होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी चर्चा की तरफ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे अस्त्र की जो बिना शोर किए सबसे बड़ी जीत दिला सकता है। वो अस्त्र है मौन। कहा गया है कि कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बेहतर कोई अस्त्र नहीं है। पहली नज़र में ये वाक्य सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गहरा दर्शन छुपा हुआ है। आज के दौर में जहां हर व्यक्ति अपनी बात सबसे पहले और सबसे ज़ोर से कहना चाहता है, वहां मौन का महत्व शायद पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं जब छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले लेती है।

परिवार में, मित्रों के बीच, कार्यस्थल पर या समाज में अक्सर एक कठोर शब्द दूसरे कठोर शब्द को जन्म देता है और धीरे धीरे संबंधों में दरार आ जाती है। ऐसे समय में यदि कोई एक व्यक्ति भी शांत रह जाए तो कई बार विवाद वहीं समाप्त हो जाते हैं। मौन कमजोरी नहीं बल्कि अपने मन और वाणी पर नियंत्रण की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वही वास्तविक अर्थों में विजेता कहलाता है। इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि अनेक महापुरुषों ने मौन को आत्मचिंतन और आत्मबल का माध्यम बनाया। उदाहरण के लिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि यदि आपके शब्द किसी के जीवन में शांति नहीं ला सकते तो मौन ही बेहतर है। महात्मा गांधी भी समय समय पर मौन व्रत रखते थे। उनका मानना था कि मौन व्यक्ति को स्वयं को सुनने का अवसर देता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण होते हैं। मनोविज्ञान भी बताता है कि जब हम क्रोधित होते हैं तब हमारा मस्तिष्क भावनाओं के प्रभाव में निर्णय लेता है। यदि हम कुछ क्षण रुक जाएं, गहरी सांस लें और तुरंत उत्तर देने के बजाय स्वयं को समय दें तो हमारा विवेक फिर से सक्रिय हो जाता है और यही मौन हमें गलत शब्दों से भी बचाता है और सही निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। हमारे घरों में यदि किसी से बहस के दौरान एक व्यक्ति धैर्य बना के रखे तो वातावरण जल्दी सामान्य हो सकता है। रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सामने वाला क्रोधित हो और फिर भी हम संयम बना के रखें। याद रखिए दोस्तों, शब्दों के घाव भरने में बहुत समय लगता है लेकिन समय पर रखा गया मौन उन घावों को बनने से ही रोक सकता है। दोस्तों, मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, ये भीतर की शांति, धैर्य और परिपक्वता का भी प्रतीक है। यह हमें सुनना सिखाता है, दूसरों को भी और स्वयं को भी। जब हम सुनना सीख जाते हैं तभी सही अर्थों में समझना भी सीखते हैं और जहां समझ होती है वहां कलह की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें, अगली बार जब क्रोध आए, जब कोई बहस बढ़ने लगे या जब शब्दों का चयन कठिन लगे तब कुछ क्षण के लिए मौन को अपना साथी बनाएं। हो सकता है वही कुछ क्षण किसी रिश्ते को टूटने से बचा ले, किसी मन को आहत होने से रोक दे और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ा दे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

उम्मीद है दोस्तों आपको ये गीत पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ और जानते हैं सूर्य के दक्षिणायन होने के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सनातन परंपरा के एक महत्वपूर्ण कालखंड दक्षिणायन की, जिसकी शुरुआत कर्क संक्रांति के साथ होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इसे देवताओं की रात्रि का आरंभ भी कहा जाता है और ये लगभग 6 महीनों तक मकर संक्रांति तक चलता है। सनातन परंपरा में समय की गणना केवल मनुष्य के लिए नहीं की गई है बल्कि देवताओं के दृष्टिकोण से भी की गई है। मान्यता है कि मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। इस एक दिन के दो भाग माने गए हैं, पहले 6 महीने उत्तरायण जिन्हें देवताओं का दिन कहा जाता है और अगले 6 महीने दक्षिणायन जिन्हें देवताओं की रात्रि माना जाता है। यही कारण है कि कर्क संक्रांति से प्रारंभ होने वाले इस काल को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। दक्षिणायन आत्मचिंतन साधना और आध्यात्मिक उन्नति का समय माना जाता है। इस अवधि में पूजा पाठ जप तप दान और सेवा जैसे कार्यों का विशेष महत्व भी है। सावन रक्षाबंधन श्री कृष्ण जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी पितृपक्ष शारदीय नवरात्रि और दीपावली जैसे अनेक प्रमुख पर्व भी इसी काल में आते हैं। इसलिए समय केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने और जीवन को सकारात्मक दिशा देने का भी अवसर माना जाता है। दक्षिणायन को लेकर कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी होता है कि क्या इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा नहीं है। पूजा दान व्रत और अधिकांश शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं। हालांकि विवाह गृह प्रवेश या अन्य विशेष मांगलिक संस्कारों के लिए मुहूर्त पंचांग और ज्योतिषीय गणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से पहले योग्य विद्वान के परामर्श लेना उचित माना जाता है। दोस्तों चाहे हम दक्षिणायन को धार्मिक आस्था के रूप में देखें या आत्म अनुशासन के प्रतीक के रूप में, इसका संदेश सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जीवन में कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालिए। प्रार्थना सेवा संयम और सद्कर्म से मन को शांति मिलती है और जीवन

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: उम्मीद है दोस्तों आपको ये गीत पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट विज्ञान की तरफ और जानते हैं मानसून के विज्ञान के बारे में। दोस्तों हम बात करें एक ऐसे विषय की जिसका इंतज़ार हर भारतीय को रहता है, मानसून, और जानेंगे कि आखिर वैज्ञानिक महीनों पहले ही बारिश का अनुमान कैसे लगा लेते हैं। दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ करोड़ों लोगों का जीवन मानसून पर निर्भर करता है। किसान खेती की तैयारी करते हैं, शहरों में जल प्रबंधन की योजनाएं बनती हैं और सरकारें भी मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं। ऐसे में सटीक मानसून पूर्वानुमान केवल मौसम की जानकारी ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और जनजीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य भी है। अब सवाल यह कि मौसम वैज्ञानिक भविष्य की बारिश का अनुमान कैसे लगाते हैं।

इसके लिए सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे मौसम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट लगातार बादलों की गतिविधियों, समुद्र की सतह के तापमान, नमी और हवाओं की दिशा पर नजर रखते हैं। इसके साथ ही समुद्र में लगे विशेष उपकरण जैसे कि मौसम केंद्र, रडार और मौसम गुब्बारे भी लगातार आंकड़े जुटाते रहते हैं। इन सभी जानकारियों को शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स में भेजा जाता है, जहां जटिल गणितीय मॉडल उनकी गणना करके संभावित मौसम का पूर्वानुमान तैयार करते हैं। दोस्तों, मानसून को प्रभावित करने वाले कई प्राकृतिक कारक भी होते हैं, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर का तापमान। आपने एल नीनो और लालीना के बारे में तो सुना ही होगा। एल नीनो की स्थिति में भारत में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना बढ़ सकती है, जबकि लालीना अक्सर अच्छी वर्षा के लिए अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा हिंद महासागर ध्रुवीय यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल भी मानसून की तीव्रता को प्रभावित करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD आधुनिक तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मौसम पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाने का प्रयास कर रहा है। आज मोबाइल फोन पर मिलने वाली हर मौसम संबंधी जानकारी भी इन्हीं वैज्ञानिक प्रणालियों का परिणाम है। हालांकि मौसम एक अत्यंत जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया है दोस्तों, इसलिए 100% सटीक भविष्यवाणी अभी भी संभव नहीं है। फिर भी विज्ञान लगातार इस दिशा में प्रगति कर रहा है। दोस्तों, मानसून केवल बारिश नहीं बल्कि प्रकृति, विज्ञान और तकनीक का अद्भुत संगम है। अगली बार जब आप मौसम का पूर्वानुमान देखें तो याद रखिए कि उसके पीछे हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत, अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट्स, विशाल सुपर कंप्यूटर्स और वर्षों का वैज्ञानिक शोध कार्य छुपा हुआ है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

उम्मीद है दोस्तों आपको ये गीत पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट खेल की तरफ और जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। दोस्तों उम्मीद है कि जिस तरह से फीफा का वर्ल्ड कप का क्रेज़ पूरी दुनिया में बढ़ा हुआ है, आप भी इस फीफा वर्ल्ड कप क्रेज़ से बचे तो नहीं होंगे। लेकिन आइए जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप के इस इतिहास के बारे में और वर्तमान में जो इसकी गतिविधियाँ चल रही हैं। दोस्तों 21 मई 1904 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में फीफा की स्थापना हुई। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इसका उद्देश्य दुनिया भर में फुटबॉल के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का संचालन करना था। शुरुआत में केवल 7 सदस्य देश थे, जबकि आज फीफा से 200 से अधिक राष्ट्रीय फुटबॉल संघ जुड़े हैं। 1930 में पहला फीफा विश्व कप उरुग्वे में हुआ। आज फीफा विश्व कप दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला खेल आयोजन है, जिसे अरबों लोग टीवी और डिजिटल माध्यम पर देखते हैं। फीफा केवल विश्व का कप तक सीमित नहीं है, ये महिला फुटबॉल युवा प्रतियोगिताओं, क्लब प्रतियोगिताओं, रेफरी प्रशिक्षण, तकनीक और विश्व भर में फुटबॉल विकास कार्यक्रमों का भी संचालन करता है। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी कुछ खास बातें हैं कि पहली बार 48 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। पहली बार 3 देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं। टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रहा है। और यदि बात करें 2026 के फाइनल की, तो फाइनल 19 जुलाई 2026 को मेटलाइफ स्टेडियम ईस्ट रदरफोर्ड न्यू जर्सी न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र में खेला जाएगा। हाली अपडेट के अनुसार फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने हैं। तो क्या आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बार के फाइनल का? हम तो कर रहे हैं। चलिए आपके इंतजार के लम्हों को नहीं बढ़ाते और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों, ये था आज का हमारा युव वाणी कार्यक्रम। उम्मीद और आशा है कि हर बार की तरह आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त संतोष चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपसे कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम

0: कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का

0: करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

संगीत का समय रहेगा शाम 6:10 और 7:30 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा शाम 6:30 और 6:45 का आकाशवाणी जयपुर से। शाम 7 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम भारती का। लोक संगीत आप सुन सकेंगे रात 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या का समय रहेगा रात 8:45 का। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9:15 से। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा रात 11 आकाशवाणी दिल्ली से। और इसी के साथ हमारी आज की सभा संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको बता देते हैं कल के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह सवेरे सभा की शुरुआत होगी सवेरे 5:53 पर। हिंदी में समाचारों का समय रहेगा सवेरे 6:00 आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम वंदनवार आप सुनेंगे सवेरे 6:05 पर। 6:35 का समय रहेगा रामचरितमानस गान का। सवेरे 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम नमस्कार अलवर का समय रहेगा सवेरे 7:00। फिल्म संगीत का समय रहेगा सवेरे 7:30 पर, शाम 6:10 पर और 7:30 का। समाचार प्रभात आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से सवेरे 8:00। सुगम संगीत का समय रहेगा सवेरे 8:15 का। कार्यक्रम बातें फिल्मों की, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 8:30 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का समय रहेगा सवेरे 9:00 और दोपहर 1:00।

विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सवेरे 9:10 पर, 10:01 पर, 11:01 पर, दोपहर 12:05 पर, दोपहर 12:16 पर, 1:05 पर और 2:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे दोपहर 12:00 आकाशवाणी दिल्ली से। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा दोपहर 2:00 और दोपहर समाचार आप सुनेंगे 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से। कार्यक्रम महिला जगत का समय रहेगा शाम 5:00। युवानी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6:00 और रात 11:00 आकाशवाणी दिल्ली से। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 6:10 का और 7:30 का। हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर और 6:45 पर आकाशवाणी जयपुर से। कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा शाम 7:00। रात 8:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। समाचार संध्या आप सुनेंगे रात 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से। विविध भारती के कार्यक्रमों का समय रहेगा रात 9:15 का। और इसी के साथ हमारी कल की सभा भी संपन्न होगी रात 11:05 पर। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म अकेले हम अकेले तुम के साथ। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत है अनु मलिक का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है आर डी बर्मन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म शराबी से ये गीत। गीतकार हैं अनजान और संगीत है बप्पी लहरी का।

और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवा देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत बताया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में वित्तीय गड़बड़ियां करने पर बीते 3 महीनों में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया। और राजस्थान पुलिस ने भिवाड़ी से साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को आज रवाना किया। उन्होंने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का रेल परिवहन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से संचालित होगा। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने

0: दुनिया का पांचवा देश बन गया है। अब तक जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका में ही ये सुविधा उपलब्ध है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है, जबकि दूसरे देशों में हाइड्रोजन ट्रेन 2 या 3 डिब्बों की होती है। इससे भारत में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से बनी 3200 हॉर्स पावर वाली इस ट्रेन को रेलवे इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट उपलब्धि बताया। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत कहा।
1: 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो ग्रीन रेल की प्रौद्योगिकी को पर्यावरण अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में डीजल की जरूरत नहीं होती है।
2: ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है, इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में है। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज ही चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क क्षेत्र की करीब 4700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके बाद श्री मोदी ने देशभर में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का जालंधर कैंट से वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल है। इन स्टेशनों पर आयोजित कार्यक्रम से स्थानीय प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग जुड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम से पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण समारोह से जुड़े। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है, उस संकल्प के साथ गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मुद्रास्फीति और रुपया स्थिर और सामान्य बना हुआ है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में श्री मल्होत्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का सेवा निर्यात, रिकॉर्ड विदेशी निवेश, एफडीआई और नए व्यापार समझौते अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति में बाधाओं से महंगाई का दबाव है। अनिश्चितता की इस स्थिति में भारत सभी क्षेत्रों में मजबूत बना हुआ है।
4: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी एमपीसी की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूँ।
0: कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से आज जयपुर में रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। इसमें 50 से अधिक कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए सैकड़ों आशार्थियों का चयन किया। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने रोजगार सहायता शिविर को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देने की बात कही। श्री राठौर ने बताया कि सरकार अब तक 24 रोजगार मेले आयोजित कर चुकी है।
5: काम सीखेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे। और ये आप सीढ़ी मान लीजिए कि सीढ़ी

0: इसका सबसे पहला कदम है आज का रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में पहला कदम लोगे, संभव है किसी और के लिए आज नौकरी शुरू करोगे, लेकिन कल खुद का रोजगार लगाओगे और दूसरों को रोजगार दे।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज भरतपुर के भुसावर में नए कृषि महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान श्री बागड़े ने विभिन्न विकास कार्यों की भी सौगात दी। राज्यपाल ने महाविद्यालय परिसर का भ्रमण कर विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से जैविक खेती को लेकर भी चर्चा की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज नई दिल्ली में एनडीए के मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, केंजरापू राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संसदीय सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करवाने का कार्यक्रम है। सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह की वित्तीय और अन्य गड़बड़ियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके तहत बीते 3 महीनों में 51 संबद्ध अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि सरकार अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में 24 अस्पतालों पर कार्रवाई कर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि इन अस्पतालों की ऑडिट में कई गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि ऑडिट प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड और म्यूल हंटर सहित कई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनके जरिए साइबर ठगों की गतिविधियों का पता लगाने के साथ ही संदिग्ध बैंक खातों, सिम कार्ड्स और अवैध मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया जा रहा है। भिवाड़ी में कल डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वारंट का डर दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश उपाध्याय ने बताया कि इस गिरोह ने कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाया। ये कार्रवाई भिवाड़ी SHO सचिन शर्मा की अगुवाई में की गई।
2: ये जो गिरोह है इसने अभी तक इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1,00,000 से ज्यादा का, मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें उससे ज्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है उसका अनुसंधान जारी है।
1: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर आज से नई दिल्ली में राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2 दिन का ये आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित और गरिमापूर्ण माहौल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को बिना डर के काम करने का अधिकार है। सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना सरकार, संस्थानों और नियोक्ताओं की साझा जिम्मेदारी है। आज दहेज प्रतिषेध दिवस है। लोगों को दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करने के लिए इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दहेज यानी शादी के लिए किसी भी तरह की संपत्ति या कीमती वस्तु मांगना एक सामाजिक कुरीति होने के साथ ही दंडनीय अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध दिवस के मौके पर पाली के राजकीय कन्या महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इसमें छात्राओं को इस सामाजिक कुरीति के नुकसान के बारे में बताया गया और दहेज मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। भारत टैक्स 2026 का आज नई दिल्ली में समापन हुआ। 4 दिन के इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, नवाचार और निवेश को मजबूत करने के लिए मंथन किया गया। सम्मेलन में 138 देशों के 1,600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इसमें 11,000 से ज्यादा खरीदारों ने भाग लिया जिनमें 6,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत बताया।

0: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में वित्तीय गड़बड़ियां करने पर बीते 3 महीनों में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया। और राजस्थान पुलिस ने भिवाड़ी से साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में रिफाइनरी उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण राजसमंद में भी दिखाया गया। जिला स्तरीय समारोह में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर जिले में 402 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट वितरित किए गए। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नौचौकी पाल पर जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 2390 योग साधकों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हल्दीघाटी की ऐतिहासिक धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अरण्य बाघ परिसर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और त्याग को याद किया गया। वहीं चेतक की स्मृति में अश्व प्रतियोगिता भी हुई। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मचिंद गांव में राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर 2 दिन का मेला लगाया गया। पहाड़ चढ़ाई प्रतियोगिता के साथ मेले में भील समाज की वीरता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। तीरंदाजी, रस्साकशी, कबड्डी सहित प्रतियोगिताओं में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग का बीते दिनों अवलोकन किया। राज्यपाल दुर्ग परिसर में बनी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुर्ग का पैदल ही अवलोकन करते हुए ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता और स्थापत्य कला को नजदीक से देखा। राज्यपाल ने दुर्ग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की, इसके संरक्षण तथा संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राजसमंद पुलिस की ओर से देवगढ़ में साइबर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया, मजबूत पासवर्ड, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। राजसमंद के भीम उपखंड में डिजिटल प्रहरी प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। साइबर पुलिस ने युवाओं को फर्जी ऐप, एपीके फाइल और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। नाथद्वारा में प्रज्ञानम टेक्नोफेस्ट 2026 के तहत शिक्षा क्षेत्र में बड़ी पहल की गई। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की संयुक्त पहल से जिले के 100 सरकारी स्कूलों में प्रगति और स्टीम लैब स्थापित होंगी। इन लैबों में विद्यार्थियों को एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछले दिनों नाथद्वारा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जिला प्रभारी सचिव आरती डोगरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आमजन के कामों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। राजसमंद में रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस संपर्क सभा का आयोजन किया गया। सभा में पुलिस जवानों ने अपनी सेवा संबंधी आवास, स्वास्थ्य और ड्यूटी प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं रखी। पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर समाधान किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। लक्ष्मी विलास धर्मशाला के पास बनने वाले इस द्वार का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। जिले में निर्जला एकादशी पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम चारभुजानाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। व्रतधारी महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए जल कलश अर्पित किए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत हाइड्रोजन रेल चलावण वालों दुनिया रो पांचवो देश बन्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनने खुद रेपाण उबो भारत बनावण और हरित ऊर्जा संकल्प री जीत बतायो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो, पश्चिम एशिया में तनातनी रा हालात रे बावजूद देश री माली व्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार आरजीएचएस में माली गड़बड़ियाकरण रा आरोप में लाडला 3 महीना में 51 अस्पताल ने योजनाओं हटाया। और राजस्थान पुलिस भिवाड़ी साइबर अपराधियों रा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह रो भंडाफोड़ किन्नो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन चालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने आज हरियाणा में जींद रवाना किन्नी। आ गाड़ी जींद सोनीपत बीच चलाई जा रही है। इस मौके श्री मोदी 12,470 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाली नेशनल हाईवे परियोजनावां री शुरुआत कीनी और पूरा भिया काम जनता ने सौंपया। प्रधानमंत्री कहो कि लाडला 12 साल में रेलवे में खास बदलाव करी चिया। श्री मोदी कहो कि 21वीं सदी री रेल व्यवस्था हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी ऊंचा लेला। प्रधानमंत्री कहो कि मौजूदा दौर में दुनिया रा केवल 3-4 देशों के नई हाइड्रोजन ट्रेन चलावन रो बूतो है। इस आगे भारत हाइड्रोजन रेल चलावन वालों पांचवो देश बन क्यों है। हाल ताई जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका में ही वो सुबितो है। 10 डिब्बों वाली इन रेलगाड़ी में 2,600 मुसाफिर सफर कर सके है। दूजा देशों में हाइड्रोजन चलाई जावन वाली रेलगाड़ियां में 2 या 3 डिब्बा फै है। प्रधानमंत्री कहो कि 3,200 हॉर्स पावर बूता वाली भारत री हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया री सब ताकतवर और हाइड्रोजन चालन वाली लंबी रेलगाड़ियां में शामिल है।
1: 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं।
0: इस मौके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाइड्रोजन चालन वाली नमो ग्रीन रेलगाड़ी री शुरुआत ने देश री तकनीकी बरकत में ऐतिहासिक उपलब्धि बतायो। श्री वैष्णव कहो कि आ गाड़ी पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है और इनमें डीजल री जरूरत नहीं है।
2: ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है, इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है।
0: प्रधानमंत्री आज ही चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, भणाई लिखाई और सड़क हलकाओं जुड़ी विकास रे करीब 4,700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत कीनी। इन पाछे श्री मोदी देश भर में और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशनारो पंजाब रा जालंधर कैंट वर्चुअल तरीका उद्घाटन कीनो। आमाए राज्य रा जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खेरथल और सोमेसरी शामिल है। आ टेसना माथे राखी जा कार्यक्रम माई वठेरा जनता रा नुमाइंदा, अहलकार और मोटी तादाद माई लोग भेड़ा फिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई नागौर जिला रा गोटन रेलवे स्टेशन माथे राखी जा कार्यक्रम माई शामिल फिया। इस मौके श्री शर्मा कहो कि ओ विकसित भारत बनावन रो संकल्प सांचो करण री दिशा माई खास कदम है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है उस संकल्प के साथ गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पट

0: यात्रियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
1: भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो है कि मध्य पूर्व में उपजी तनातनी रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था मजबूत बनी है। डीडी न्यूज चैनल सागे बातचीत करता था श्री मल्होत्रा कहो कि भारत कानियों दिशावर में भांत भांत री सेवा मुहैया करावणो रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और नुआ कारोबारी करार माली व्यवस्था ने मजबूत बना रहा है। वह कहो कि अनिश्चितता रा हालात में आई भारत सगला हलका में मजबूत बनियोड़ो है।
2: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी MPC की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूँ।
1: कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग री ओरों आज जयपुर में रोजगार सहायता शिविर लगाईचियो। इनमें 50-32 कंपनियां न्यारा न्यारा ओहदा सारू उम्मीदवारा ने नौकरी रा प्रस्ताव दीना। ई मौके उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ स्थानीय स्तर माथेई नौजवाना ने कौशल आधारित रोजगार देवण री अरज कीनी। कर्नल राठौड़ बतायो कि सरकार हाल ताई 24 रोजगार मेला लगा चुकी है।
3: काम सीखेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे, और ये आप सीढ़ी मान लीजिए कि सीढ़ी का सबसे पहला कदम है आज का रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में पहला कदम लोगे, संभव है किसी और के लिए आज नौकरी शुरू करोगे लेकिन कल खुद का रोजगार लगाओगे और दूसरों को रोजगार देंगे।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज भरतपुर जिला रा भुसावर माए एग्रीकल्चर कॉलेज रो नुओ भवन जनता ने सौंपियो। ई मौके राज्यपाल कॉलेज परिसर रो दौरो कर वछे मुहैया कराया जा रहा न्यारा न्यारा सुबितां रो जायजो लीनो। वह किसाना सागर जैविक खेती रे बारे माए चर्चा कीनी। कार्यक्रम माए कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई मौजूद रहा। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई शुरू फैला। इनु पहले आज नई दिल्ली में NDA रा मंत्रियों रा समूह री मीटिंग रखी जी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, किंजरापुर राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू मीटिंग में शामिल थिया। मीटिंग में संसदीय सत्र री रणनीति रे बारे में चर्चा करी जी। सत्रों पहले 19 जुलाई ने सगली पार्टियां री मीटिंग बुलाई जी है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS माय साफ कोई और जवाबदेही तय करण सारू अपनाई जी जीरो टॉलरेंस नीति रा तहत लारला 3 महीना माय 51 संबद्ध अस्पतालों ने योजनाओं हटाती ना। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बतायो कि लाडला महीना 24 अस्पतालों माथे गड़बड़ियां रा आरोप माए करीब 3 करोड़ रुपया रो जुर्मानो लगाईचियो। चिकित्सा विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि आ अस्पतालों री ऑडिट माए कई माली गड़बड़ियां सामी आई। साइबर अपराधियां माथे काबू करण सारू राजस्थान पुलिस री ओर ऑपरेशन साइबर शील्ड और म्यूल हंटर समेत कई खास अभियान चलाया जा रहा है। इरे जरिए साइबर ठगां री करतूतां री ठा करण सागे शंका वाला बैंक खाता, मोबाइल सिम कार्ड्स और गैर कानूनी तरीकों चलाया जा रहा मोबाइल नंबर ब्लॉक कराया जा रहा है। दुनियारा न्यारा न्यारा हलका माए डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वारंट रो डर बतार ठगी करण वाला एक गिरोह रो भिवाड़ी रा SHO सचिन शर्मा री अगुवाई माए भांडाफोड़ करी चियो। भिवाड़ी रा SP ब्रिजेश उपाध्याय बतायो कि वो गिरोह कई राज्यों माए ठगी री वारदाता कीनी।
4: ये जो गिरोह है इसने अभी तक इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1,00,000 से ज्यादा का मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें उससे ज्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है उसका अनुसंधान जारी है।
1: कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध

0: विध और निवारण कानून 2013 रे बारा माय आज नई दिल्ली माय राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू थियो। दो दिन रो ओ कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग री ओर राख्यो जा रियो है। ई मौके केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहो के महिलाओं री अगुवाई माय विकास रा संकल्प ने आगे बढ़ावन सारू काम री ठोड़ सुरक्षित और मान वालो माहौल जरूरी है। वह कहो के हर महिला ने बिना डर काम करण रो हक है और काम रो सुरक्षित वातावरण बनावनो सरकार संस्थाना और नौकरी देवन वाला री भेली जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार खिलाड़ियां कानून रोक लगायोड़ी दवाइयां काम लेवन न रोकन सारू राष्ट्रीय डोपिंग रोधी कानून 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन कानून 2025 लागू करण रो ऐलान किनो है। वो कानून देश रा डोपिंग रोधी ढांचा ने वैश्विक मानका ने मुजब मजबूत बनावे है और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने जांच रो हक देवे है। कपड़ा हलकाऊ जुड़ियो भारत टैक्स 2026 सम्मेलन आज नई दिल्ली माय पूरो भेग्यो। चार दिन रा ई सम्मेलन माय कपड़ा बनावण ई हलका माय नुआ काम करण और निवेश ने मजबूत करण रे बारा माय चर्चा करी जी। सम्मेलन माय 1,672 प्रदर्शक शामिल भया। इन माय 11,000 खरीददार ई शामिल भया जा माय 6,000 दूजा देशां रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी में प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित किया जावन वाला इन कार्यक्रम री 136वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही सुझाव 24 जुलाई ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे भेज सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो। भारत हाइड्रोजन नो रेल चलावन वालो दुनिया रो पांचवो देश बनियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनने खुदरे पान उबो भारत बनावन और हरित ऊर्जा संकल्प री जीत बतायो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो पश्चिम एशिया में तनातनी रहा हालात रहे बावजूद देश री माली व्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार आरजीएचएस में माली गड़बड़ियां करण रहा आरोप में लारला 3 महीना में 51 अस्पताल ने योजनाओं हटाया और राजस्थान पुलिस भिवाड़ी में साइबर अपराधियां रा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह रो भंडोफोड़ कीनो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम की चौपाल में बैठा सभी किसान भाई और बहनों को महेश भाई की ओर सु घनी घनी राम राम, मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, आज की अपनी चौपाल में अपन चर्चा करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती एवं समन्वित नाशी जीव प्रबंधन पर। जानकारी की बातों का विषय रहेगा ग्वार की उन्नत खेती। साथ ही किसान भाइयों सुनेंगे एक भेंटवार्ता, नवीन बगीचे की स्थापना में ध्यान देने वाली बातें, और किसान भाइयों जानेंगे मौसम का हाल और बाजार भाव, और साथ ही करेंगे मनोरंजन एक चौके से लोकगीत से। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं आज की चर्चा कद्दू वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक खेती एवं समन्वित नाशी जीव प्रबंधन। कद्दू वर्गीय सब्जियों में अन्य सब्जियों की तुलना में कम कैलोरी व आसानी से पचने

वाली होती है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। जायद में उगाए जाने वाली जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ हैं उनमें लौकी, तुरई, कद्दू, करेला, टिंडा, तरबूज, खरबूज, परवल, खीरा आदि सभी अपन बोते हैं, इनको सबको इसमें शामिल कर देते हैं। अब किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है कि बुआई में ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले तो हमें कोई सी भी फसल बोएं उसमें बीजों का उपचारित करना आवश्यक

0: महत्वपूर्ण जो बात आती है कि बुआई में ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले तो हमें कोई सी भी फसल बोएं उसमें बीजों का उपचारित करना आवश्यक है। ऐसे ही हम कद्दू वर्गीय जो बीज है उनको कार्बोनिजम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इन्हें उपचारित करना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण बात यह आती है कि आप नदी के पेटे में बो रहे हैं या समतल मैदानी भागों में बो रहे हैं। यदि आप अगेती बो रहे हैं तो इन्हें थैलियों में बोया जा सकता है, और थैलियों में 1/3 भाग चिकनी मिट्टी, 1/3 भाग बालू, 1/3 भाग गोबर मिलाकर थैलियों में 2 बीज बोया जा सकता है। झाड़े से इनमें सिंचाई करें और रात्रि के समय जब सर्दी हो तो इन्हें पॉलोथीन से ढक दें। अब इससे क्या होगा कि जब तक सर्दियां रहेंगी हमारे जो पौधे हैं काफ़ी बड़े हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे, तो ये एक अगेती फसल के लिए बहुत बढ़िया रहता है। यह पौधा 21-22 दिनों में रोपने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। सीधे खेत में बोने के लिए बीजों की बुआई से 24 घंटे पहले भिगो देना चाहिए, फिर टाट के में बांधकर 24 घंटे रखें। उपयुक्त तापक्रम पर रखने से इनमें अंकुरण की प्रक्रिया गतिशील हो जाती है, और जिससे हमारा जो बीज बोया हुआ है वो शीघ्र ही अंकुरित होकर पौधे के रूप में बाहर आने लग जाता है। ध्यान देने योग्य ये भी बात है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में नालियों में बुआई करनी चाहिए। नालियों में 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी और 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी और एक तरफ बिजाई करनी चाहिए, यानी बीज जो बोना चाहिए वो एक तरफ। यदि हमें दोनों तरफ बीज बोना है तो इसकी चौड़ाई हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव सबसे पहले सुबह के समय न करें, शाम के समय करें, क्योंकि सुबह के समय जो परागण करने वाले जो कीट रहते हैं वो मर जाएंगे और हमारे लिए नुकसानदायक रहेगा। इसमें अगर हम जैसे बात करें लौकी की जो किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, उसमें पूसा समर प्रोफाइल लॉन्ग, पूसा समर प्रोफाइल राउंड, पूसा नवीन, पूसा मंजीरी, कद्दू में पूसा अलंकार, पूसा विश्वास, अर्कचंद्रा, करेले में कोयम्बटूर लॉन्ग, पूसा दो मौसमी, प्रिया आर्का हरित, तरबूज में शुगर बेबी, आसाई और यामाटो। इसी तरह से खीरा बालम खीरा है, पानाइट्स है। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है, इसमें कीट लगते हैं। कीट जो लगते हैं उनमें जैसे लाल भ्रंग है, लाल भ्रंग में पैराथियन 2% 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें। फल मक्खी है उसके लिए, जो टिंडे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है, थायमिएट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर में मिलाकर उसका छिड़काव करें। सफ़ेद मक्खी है उसको, उसके लिए भी हम इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और छाछा रोग के लिए कैराथेन या कैलेक्साइन, इनका प्रयोग करके हम उनसे उनके जो रोग हैं उनसे निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, ये आज की चर्चा। अब समय है भेंटवार्ता का, नवीन बगीचे की स्थापना में ध्यान देने योग्य बातें। श्री संदीप कुमार पंचोली, कृषि अधिकारी, उद्यान विभाग, अलवर से भेंटवार्ता। लेकिन उससे पहले सुने ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: देखो, आज हमारे साथ हैं संदीप कुमार पंचोली। आप कृषि अधिकारी उद्यान विभाग अलवर में कार्यरत हैं। इस समय जो बरसात का जो समय चल रहा है, जुलाई के महीने में नए जो बगीचे लगाते हैं बागवानी में, उनके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। नई बगीचे किस तरीके से लगाएं जिससे बढ़िया उत्पादन, और आधुनिक तरीके से जो किसान भाई अपना बगीचा लगाएं। नमस्कार।
4: नमस्कार किसान साथी।
3: देखो संदीप, सबसे पहले आप ये बताएं कि जैसे कि जो किसान भाई नया बगीचा लेना चाहता है, तो आपके विभाग द्वारा क्या कुछ उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, और जो उसकी रुचि है उसके क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन से पौधों के बगीचे वो लगा सकता है?
4: देखिए किसान साथियों, उद्यान विभाग द्वारा किसानों को जो है नवीन बगीचा स्थापना के लिए एक सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है, जिसमें अगर किसान साथी किसी भी अक्रेडिटेड नर्सरी या

0: सरकारी उपक्रम की जो नर्सरी है, चाहे वो राजहंस नर्सरी हो, चाहे वो कोई उत्कृष्टता केंद्र हो किसी फल विशेष का, या कोई कृषि महाविद्यालय हो और या कोई रिसर्च सेंटर हो, अगर वहाँ से अगर वो पौधों की खरीद करता है उसका पक्का बिल लेता है, और साथ ही अगर वो ड्रिप सिस्टम उसमें लगाता है तो उद्यान विभाग द्वारा उनको प्रति हेक्टर जो लागत है उसका 40% के हिसाब से उनको सब्सिडी प्रदान की जाती है।
1: तो देखो, इसके बारे में थोड़ा सा उसको लिए क्या, ये जानकारी आपने बताई, तो ये इसके लिए कहाँ जाए, ई मित्र पे अपना ऑनलाइन कराए या आपके विभाग में आके संपर्क करें?
0: देखिए किसान साथियों, इसके लिए किसान भाई दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं, या तो किसान भाई खुद राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर उसका आवेदन कर सकते हैं, जिसमें उसको संबंधित जो खसरा है जिसमें वो बगीचा लगाना चाह रहा है उस खसरे का नक्शा, और कौन सा फल जो लगाना चाह रहा है वो, उसकी दूरी क्या रखना चाह रहा है वो, और साथ ही उस जो जमीन है उसकी उसकी जमाबंदी, ये लगाकर वो खुद भी आवेदन कर सकता है, या अगर वो अपने स्तर पे सक्षम नहीं है तो वो किसी ई मित्र केंद्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर भी उसको आवेदन करवा सकता है।
1: तो अलवर के आसपास के जो क्षेत्र है की बात करें तो इसमें कौन कौन से फल के पौधे ज्यादा पैदावार देने और लाभकारी हैं?
0: देखिए अलवर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ प्रमुख रूप से जो बगीचे विगत 2-3 सालों में जो सामने आए हैं, जो काफ़ी सफल भी रहे हैं, उनमें आंवले के बगीचे, बेर के बगीचे, नींबू वर्गीय जो है जिसमें नींबू मौसमी, इनके बगीचे काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, और किसान साथियों की जो अधिक जो डिमांड है वो भी इन्हीं फसलों के ऊपर रहती है।
1: जी, तो इनकी किस्म की अगर बात करें और उपलब्धता, जैसे अपने अलग अलग फल, इनके फलदार पौधों की बात करें, जैसे आंवला है, बेर है, मौसमी है, जो अभी आपने बताया, इनकी कौन कौन सी किस्में उपलब्ध हैं और वो उपलब्ध कहाँ होती हैं?
0: देखिए किसान साथियों, इसमें अगर हम नींबू वर्गीय पौधों की बात करते हैं तो देखिए किसान साथी, अगर नींबू वर्गीय पौधा अगर कोई किसान साथी लेता है तो सबसे पहले बगीचा स्थापना के लिए उसको जो है वो बीजू पौधा ही खरीद करना चाहिए, और बीजू पौधे में जो यहाँ पर जो खरीद है वो आप हमारे जो नारायण विलास नर्सरी परिसर है, जो हमारे मिनी सचिवालय के सामने जो स्थित है, वहाँ से खरीद कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसके जो उत्कृष्टता केंद्र है जो कोटा में स्थित है, आप वहाँ से भी उसकी खरीद कर सकते हैं, और जो दूसरे फलदार जो पौधे हैं जैसे आंवला है या बेर है, तो इनके पौधे आप अलग अलग सरकारी उपक्रम जो हैं आप वहाँ से भी खरीद कर सकते हैं। अगर आपको सब्सिडी लेनी नहीं है अगर उद्यान विभाग से, तो आप किसी प्राइवेट नर्सरी, लेकिन वो अक्रेडिटेड हो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से, तो आप वहाँ से भी जो है उसके पौधे हैं जो उपलब्ध कर सकते हैं। अब इसमें अपने क्षेत्र में जो आंवले की जो प्रमुख जो किस्म जो चलती है वो NA7 चलती है, दूसरा चकैया जो किस्म है वो काफ़ी सफल रही है अपने क्षेत्र में, इसके साथ ही जो नींबू की जो है वो कागजी जो किस्म है वो काफ़ी सफल रही है, मौसमी में 54 छाप जो वेराइटी आती है वो काफ़ी सफल है, और बेर के मामले में अलग अलग लोगों के अलग अलग राय है, जिसमें थाई एप्पल भी लेते हैं, गोला भी लेते हैं, उमरेण भी लेते हैं, तो वो भी काफ़ी सफल यहाँ पर मानी गई है। तो किसान साथी इस हिसाब से अपने एरिया के अनुसार जो है वो फल का चयन कर सकता है, और उपयुक्त किस्म का जो है वो चयन करके नवीन बगीचा स्थापना कर सकता है।
1: जी, तो सबसे पहले जब आपने बताया उनको कि ये फलदार पौधे की उपलब्धता यहाँ रहेगी, ये किस्में ज्यादा उपयुक्त हैं, तो गड्ढे का जो तैयार करने का जो तरीका है, जो किसान भाई किस हिसाब से और किस समय पर ज्यादा उपयुक्त रहता है?
0: देखिए अगर किसान भाई को नवीन बगीचा लगाना है तो उसका सबसे उपयुक्त जो समय है वो जुलाई अगस्त, जो अपन वर्षा ऋतु जो कहते हैं, उसमें उसके सफल रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब उसमें उसके लिए क्या करना है, जो गर्मी का जो माह है जिसमें कई किसान साथियों ने जो है वो गड्ढे खोद भी लिए होंगे, जो मई जून का जो महीना है जिसमें सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे किसान साथियों को जो है वो पौधा जो फल जो सेलेक्ट कर रहा है वो किसान भाई, उसके अनुसार जैसे अगर वो आम का बगीचा लगाना चाह रहा है तो उसकी साइज़ क्या काफ़ी बड़ी रहती है, तो उसके लिए जो उसको गड्ढा खोदना है वो उसको 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर में, यानी कि लगभग लगभग 3-3 फुट के हिसाब से लेनी है। अगर बेर के मामले में अगर वो जाता है तो उसको जो है वो 2-2 फिट के हिसाब से, 2 फिट लंबाई चौड़ाई और गहराई के हिसाब से ये गड्ढा खोद लेना है। उस गड्ढे को पहले खोद के खाली करने, जब उसकी मिट्टी निकाल लेगा किसान भाई, तो उसमें 25 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद जो है वो किसान भाई को उसमें सबसे पहले डालनी है, क्योंकि जो प्रारंभिक जो उसका पोषण जो है उसके लिए उसको वो खाद काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा उसमें जो सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है SSP, वो करीब 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और

0: साथ ही 50 से लेकर 100 ग्राम क्यूनोल पोस्ट जो चूर्ण जो आता है पाउडर, जिससे जो काफ़ी क्षेत्रों में दीमक की समस्या जो रहती है या अन्य कीटों की जो समस्या है प्रारंभिक अवस्था में जो जड़ों में
1: जो कीटों का प्रभाव नहीं है उसके लिए भूमि उपचार के रूप में
0: उसको क्यूनोल पोस्ट पाउडर या निमेटोड जैसी अगर किसी क्षेत्र में समस्या है तो उसके लिए वो नीम की खली जो 2 से लेकर 5 किलो तक नीम की खली
1: प्रति पौधा या प्रति गड्ढा के हिसाब से
0: प्रति गड्ढा के हिसाब से वो उसमें भर के और उसको जो है वो खुला छोड़ देना है ताकि जो तेज गर्मी जो है सूर्य की वो उसके जो हानिकारक जो कीट हैं हानिकारक जो पैथोजन है उनको वो खत्म कर सके। और जब बारिश का समय जब स्टार्ट हो जाता है तो जो अपने क्षेत्र में जो सेलेक्टेड जो फलदार जो पौधे हैं उनकी जो उचित जो किस्में हैं उनकी खरीद करके वो उसमें रोपण कर देता है तो काफी हद तक वो सफलतापूर्वक जो है वो बगीचा लगा सकता है।
1: तो संदीप जी ये बताएं कि जो रोपण करते समय क्या कुछ विशेष सावधानी रखें जिससे पौधा सारे उसमें ज्यादा मात्रा में सफल होने के चांस रहे।
0: देखिए रोपण के टाइम जो किसान साथी अधिकतर जो गलती करते हैं, एक तो आजकल क्या है प्लास्टिक बैग्स में जो पौधे आते हैं तो उनको जो हटाने के लिए किसान भाई जो है वो काफ़ी रफ तरीका या तो हाथ से जोर से फाड़ देते हैं तो उससे क्या है उसमें जो जड़ें हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं प्रारंभिक अवस्था में, अगर उन जड़ों में हल्का भी डैमेज हो जाता है तो वो उस टाइम पे स्थापना में थोड़ी समस्या आएगी। दूसरा जो है वो स्थापना के बाद जो है वो किसान कई किसान साथी जो हैं वो उसमें पानी देने जो है वो बंद कर देते हैं तो शुरुआती अवस्था में उसको पानी की काफ़ी सख्त आवश्यकता रहती है तो किसान साथी ये भी ध्यान रखें। तीसरा जो है उसमें एरिएशन ना छोड़ें यानी उसको जो है वो टाइट दबा के जो है वो पौधे को लगाएं, ऐसा नहीं हो उसको हल्का लूज छोड़ दोगे तो
1: ये अभी आपने बताया जो टाइट करें इससे क्या फायदा रहता है।
0: देखिए इससे जो है ऊपर का जो एरिएशन है वो नीचे के जो एरिएशन से उससे मेंटेनेंस रहता है तो क्योंकि अगर अगर आप उसको टाइट नहीं करेंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें और मिट्टी के बीच में जो गैप है वो गैप रह जाएगा, पोषण जो लेने में पौधे को काफ़ी समस्या आती है तो इसके लिए किसान साथी जरूर ध्यान दें कि उसको बिल्कुल टाइट जो है वो तो लगाएं पौधे को।
1: जी और कुछ विशेष संदेश अपने किसान भाई जो नया बगीचा लगाना चाह रहे हैं और उत्पादन के लिए कुछ विशेष अपने इस ओर अग्रसर हो रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे।
0: देखिए किसान साथियों जो किसान साथी पहले की जो परंपरागत जो खेती कर रहे हैं जो अपनी अनाज फसलें जो ले रहे हैं उन फसलों के अलावा जो किसान साथियों को जो है वो फल बगीचों की तरफ उनको निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए क्योंकि फल बगीचों का जो उत्पादन और उससे जो लागत है उसके मुकाबले उसका मुनाफा काफ़ी अच्छा रहता है बजाय कि आपके अनाज फसलों के, तो किसान साथियों को जो है उसके तरफ ज़रूर जाना चाहिए। साथ ही उद्यान विभाग से जो राजस्थान सरकार द्वारा उसके ऊपर सब्सिडी मिल रही है इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो बात है किसान साथियों को इसमें सूक्ष्म सिंचाई जो है संयंत्र वो आवश्यक रूप से लगाने चाहिए क्योंकि प्रारंभिक जो 3 साल का जो पौधा है उसके पोषण के लिए सूक्ष्म सिंचाई या ड्रिप जो सिस्टम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन में हो चाहे वो किसी कीटनाशी का या जो रोगनाशी हो उसका अगर आपको स्प्रे करना है जो उसमें ड्रिप जो सिस्टम है उसमें वेंचुरी के माध्यम से हर एक पौधे की जड़ में
1: अलग से स्प्रे करने की जरूरत नहीं, वो मशीन द्वारा स्वतः ही पौधे की जड़ों में दवा भी पहुंच जाती है पोषण भी पहुंच जाता है और पानी भी पहुंच
0: पानी भी बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान साथियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो अधिक से अधिक जो है वो अपने क्षेत्र में बगीचे लगाने चाहिए।
1: जी संदीप जी बहुत अच्छी जानकारी आपने अपने किसान भाई की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: किसान भाइयों ये तो सुनिए अपने अभी भेंटवार्ता भेंटवार्ता का अर्थ है श्री संदीप कुमार पंचोली कृषि अधिकारी उद्यान विभाग अलवर। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उद्यानों के मामले में नवीन बगीचों की स्थापना के बारे में अपन को दी और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा किसान भाइयों। किसान भाइयों अब समय है मनोरंजन का, तो सुनते हैं एक चौका सा लोकगीत लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

0: किसान भाइयों, ये अभी आपने सुना मिस्री का बाग लगा दे रसिया, सीमा मिश्रा और उनके साथियों का गाया हुआ था। अब जानकारी की बातें, किसान भाइयों जानकारी की बातें अपन जाने, उससे पहले सुनते हैं संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: किसान भाइयों, जानकारी की बातों में ग्वार की उन्नत खेती, ग्वार की जो खेती है उसमें राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। राजस्थान के साथ गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें भी बोया जाता है, लेकिन पूरे देश का लगभग 87% ग्वार भारत राजस्थान में बोया जाता है। ये एक फलीदार पौधा है, इसमें एक गम निकलती है, गोंद सी निकलती है जिसे ग्वार गम कहते हैं, वो भी काफ़ी महंगी मिलती है, कई सारे उद्योग धंधों में उसको काम में लिया जाता है। ग्वार की जो फसल है हरी खाद और हरे चारे के रूप में भी उपयोगी है। लेकिन किसान भाइयों, ग्वार की पैदावार हमारे यहाँ राजस्थान में कुछ कम होती है और उसके जो कुछ कारण हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। ग्वार की अधिकांश खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है और इसकी पैदावार वर्षा की मात्रा पर पूर्ण रूप से निर्भर करती है। सितंबर माह में ग्वार की फलियां बनती है, उनमें दाने बनते हैं और अपने देखा है यह समय प्राय वर्षा की कमी हो रहती है और जिसके कारण फसलों में गिरावट हो जाती है। यहीं यदि वर्षा हो जाए या सिंचाई से हम पानी दे दें तो ये फसलें बढ़िया हो सकती हैं। ग्वार को साधारणतः उन भूमियों में उगाया जाता है जहाँ दूसरी फसलें उगना कठिन है, यानी उनमें ज़्यादा उर्वरकता नहीं है, जीवाश्म भी नहीं होते, तो इसलिए उत्पादन कम हो जाता है। उच्च तकनीकी और उन्नतशील शीघ्र पकने वाली जो प्रजातियों का अभाव है, किसान वही परंपरागत और पुरानी विधियों से और देसी प्रजातियों को ही उगाता है। अभी इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। ग्वार की खेती किसान आमतौर पर खाद एवं उर्वरक प्रबंधन को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, जो सही नहीं है। इसमें भी खाद और उर्वरक के बारे में पूरी जानकारी किसान भाइयों को रहनी चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। किसानों को पर्याप्त मात्रा में उन्नतिशील प्रजातियों की प्रमाणित बीज नहीं मिल पाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। किसान व्याप्त निर्धनता और साक्षरता का अभाव देखने को मिलता है, यानी उनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, निरक्षरता की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं और इस कारण से भी बहुत सारी जो नई विधियाँ हैं, नए नवाचार हैं, उनसे वो दूर रह जाता है। अब अगर हम बात करें कि भारत में कुल ग्वार का 87% राजस्थान में होता है और इस राजस्थान में भी चूरू, सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, इनके असिंचित भागों में इसकी फसल उगाई जाती है। किसान भाइयों, कोई भी ग्वार उगा रहा हो तो ये बात ध्यान रखें, ग्वार की फसल में बढ़ने की प्रारंभिक अवस्था में चारे में HCN की मात्रा 40-70% तक होती है। औसतन 55 किलोग्राम प्रति 100 ग्राम चारे में पाई जाती है। जो जो फसल बढ़ती है इसकी मात्रा कम होती जाती है, फसलों के पकने पर इसकी मात्रा कम होती है। और ये जो HCN है ये एक तरह का जहर होता है, इसलिए उससे पहले पशुओं को इसको खिलाना नुकसानदायक होता है, पकने के बाद हम इसे आसानी से खिला सकते हैं। जहाँ तक हम जलवायु की बात करें तो ग्वार की फसल जायद में यानी

गर्मियों में होती है, खरीफ बरसात में उगा सकते हैं। इसे सूखा सहन करने वाली फसल है और उन स्थानों पर भली प्रकार से पैदा की जा सकती है जहां औसत वार्षिक वर्षा 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। अब अगर हम उन्नत प्रजातियों की बात करें, जो दाने के लिए दुर्गापुरा सफ़ेद है, HG75 है, दुर्गापुर विजय है, FS277 है। हरी फलियों के लिए है, दुर्गापुरा है, पूसा सदाबहार है और पूसा मौसमी है। चारे के लिए अगर हम बात करें तो HFG119, HFG156 इन फसलों को हम काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय है आज के बाजार भाव का, तो आज के बाजार भाव की बात करते हैं। अलवर की मंडी का जो आज का बाजार भाव रहा है उसमें गेहूं का है 2450 से लेके 2550 रुपये प्रति क्विंटल, जो 2150 से 2350 रुपये प्रति क्विंटल, चना 5200 से 5600 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 7500 से 8100 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा 2050 से लेके 2100 रुपये प्रति क्विंटल, ग्वार 4000 से लेके 4600 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, चलते चलते अपन बात कर लेते हैं मौसम की। आज तेज गर्मी रही है तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस का रहा है। और किसान भाइयों, गड़ी कह रही है लो वाया से दादात। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं श्री नीरज भगत। सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, घनी घनी राम राम।

अभी आप ग्राम भारती कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में फिल्म कहता है दिल बार बार के इस गीत के साथ।

अगला गाना आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज में फिल्म दीवाना से। गीतकार हैं समीर और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं फिल्म आ अब लौट चले से ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आनंद राज आनंद की आवाज में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मस्ती से। गीतकार हैं समीर और संगीत है आनंद राज आनंद का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म धड़कन से ये गीत। गीतकार थे समीर और संगीत था नदीम श्रवण का। अगला गीत आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में फिल्म अर्थ से। गीतकार है काफी आजमी और संगीत है जगजीत सिंह का।

जगजीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म अर्थ से ये गीत। और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारे कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आप सुनेंगे आज लोक गाथा बाबा रामदेव का ब्यावला। कलाकार रहेंगे सूरज भोपा और

रामदेव बाबा छोटा राम दे निशा और मारे राम दे धनी रियो लीला नारी जियो लीला नारी जियो घनी घनी खमारे कमरी अजमान रा।

0: हाथ भी जोड़ के लकी बनी चारा भोला सा, हाथ भी जोड़ के लकी बनी चारा भोला सा। और मारी अरज सुनो द्वार खारा, साई जियो हमे साई जियो, धनी धनी खमारे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: और इसी के साथ लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरुणा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।

0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहाँ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय

0: राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: इन ओवर 3 decades
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
3: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
2: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो।

गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कानन देवी की आवाज में। गीतकार हैं पंडित मधुर, संगीतकार हैं कमल दास गुप्ता और फिल्म का नाम है

आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में अगला गीत। शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम है कन्हैया।

आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में अगला गीत। शंकर जय किशन के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम है कन्हैया।

0: कल रात की तौबा।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
5: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है तलत महमूद की आवाज में।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए चितलकर और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार है सी रामचंद्र, फिल्म का नाम है आजाद।

कार्यक्रम का अगला गीत है हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार है साहिल लुधियानवी, संगीतकार है सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है जाल।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगार है जानिसार अख्तर, संगीतकार है ओपी नैयर, फिल्म का नाम है छू मंतर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: जगन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थी बे आवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज़ जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की।

श्रीदेवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं, जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती।

चार दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहीं। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में करती रहीं। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता की मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रही, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया।

इतने छोटे से उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रही जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमिनोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थी।

आनंद देवी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और अपना एक बैनर शुरू किया जिसका नाम रखा श्रीमती पिक्चर्स।

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रही। उनके कुछ ऐसे ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्य। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

कानन देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थी और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थी। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला, और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

आनंद देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थी, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थी, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

0: कृपानंद देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई ना कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।
1: वन में भी जो बहके फूल रोग सुहाना ही होगा।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

आनंद देवी के प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

0: प्यारे नहीं मानूंगी बात तिहारे।
1: कानन देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रहीं। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरभ घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूँ विधि प्रवीण जैन। हर एक ख्वाब में बसती है तेरी नजर, मेरे हर ख्याल को छूती है तेरी नजर। दिल भी अजीब है मानता ही नहीं, कितनी बार समझाया फिर ढूंढे तेरी नजर। वो लफ्ज क्या कहें जो जुबां तक ना आए, सब राज बयां करती है तेरी नजर। मैं खो गई हूँ जैसे किसी गहरे समंदर में, जब से मुझ पर ठहरी है तेरी नजर।

वो चेहरा मानो प्रकृति की सबसे कोमल और रमणीय रचना हो, जहां हर रेखा में सौंदर्य की मधुर छाया बसी हुई है। कपूलों पर झलकती हल्की लाली संध्या की अंतिम आभा से प्रतीत होती है, और उसकी गहरी भावपूर्ण आंखें किसी अनंत कथा का मौन आमंत्रण देती हुई मन को बांध लेती हैं। अधरों पर सजी मृदुल मुस्कान ऐसे खिलती है जैसे किसी नव प्रभात में कली पहली बार मुस्कुराई हो, जिसमें ना कोई आडंबर है ना बनावट, केवल निष्कलुष आकर्षण। उसके चेहरे का एक समग्र सौंदर्य किसी एक अंग में नहीं, बल्कि उस अद्भुत समन्वय में है, जहां प्रत्येक भाव और प्रत्येक आभा मिलकर एक ऐसी मोहक छवि रचते हैं जो केवल देखी नहीं, बल्कि गहराई से अनुभूति की जाती है।

फंद पलकों से तुझे पढ़ लेना हुनर हो जैसे, बिन नजर के भी तेरा मिलना असर हो जैसे, तेरी आहट ही मेरे दिल में उतर जाती है, हुई खामोश दुआ रूह का सफर हो जैसे, यूं तो आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती, रूह से रूह का मिलना ही न...

0: पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। तेरी नजर से ही पहली वो मुलाकात हुई, दिल को खामोश सी एक मीठी सी बात हुई, एक पल ठहरी जो आंखें तेरी आंखों पे, जिंदगी जैसे वहीं से नई शुरुआत हुई। हम तो वाकिफ भी ना थे इस अजब एहसास से, एक नजर क्या मिली रूह में बरसात हुई, तेरी पलकों की झपक में कोई जादू था, हर खुशी जैसे मेरे नाम की सौगात हुई। कभी किसी की नजर शरारत से मुस्कुराती है तो लगता है जैसे उसमें कोई राज छुपा हो, एक ऐसा राज जिसे कहना तो वो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, और कभी वही नजर इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें डूब जाने का मन करता है बिना ये सोचे कि लौट पाएंगे या नहीं।
1: नजरों से कह दो जी

मोहब्बत अगर लफ्जों में बयां होती तो शायद इतनी खूबसूरत होती नहीं। असल जादू तो बस इसी में है कि उनकी नजर चुपचाप उनके दिल को छू लेती है, बिना आवाज, बिना इजाजत, और फिर सब कुछ अपना सा महसूस होता है। अगर वही नजर खफा हो जाए तो जज्बात दम तोड़ देते हैं।

तेरा सुरूर दिखता है, तेरी खामोशी भी जैसे कोई गजल कहे, हर लफ्ज में छुपा हुआ एक गुरूर दिखता है। जब से तेरी चाहत ने छुआ है रूह को, हर दर्द में अब एक सुकून दिखता है। तेरी आंखों की गहराई में डूब कर देखा, वहीं कहीं मेरा मुकद्दर लिखता है। अब दिल की नजर को और कुछ भाता नहीं, हर तरफ बस तेरा ही हुजूर दिखता है।

नजर, निगाहें, आंखें बस जज्बात बयां करती हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ देती हैं। निगाहें वो कह देती हैं जो जुबान नहीं कह पाती, और निगाहें निगाहों की बातों को कह देती हैं। आज के कार्यक्रम छाया गीत में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: गाले साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: जाग पतंजी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद तरोगे

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब से कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी

0: जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं और इसी के साथ हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। सवेरे 5:55 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी अलवर का ये सरस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं और इसी के साथ हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। सवेरे 5:55 पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।